डालस की जनता, क्या हाल है आप सभी लोगों के? मेरे तो बिल्कुल ठीक हैं। आई होप आपने मुझे ज़्यादा मिस तो नहीं किया भाई। दिस इज़ एपी द हिपी, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM, एंड आई होप यू आर हैविंग ए वंडरफुल थर्सडे। क्योंकि पता है क्या, 2 दिन बाद वीकेंड शुरू होने वाला है। एग्जैक्टली, आई एम एक्साइटेड फॉर द वीकेंड। आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर द वीकेंड। और भाई, मैं आई कि नहीं आई कि कॉल आना शुरू हो गई। आप ये गाना सुनिए एंड आई विल बी राइट बैक विथ यू।

0: Llevo 20 años en este negocio y no van a tener ningún problema.
1: Es que push time, ¿qué tal la gente?
2: ¿Y cuánto tiempo se tarda en entregarlos?
0: Una semana.
2: In one week, ready.
3: Take care of
1: yourself, yeah? Okay.
3: Bye-bye. बस एक हफ्ते में. एक हफ्ते में तेरा पासपोर्ट लेके आता हूँ मैं. बस एक हफ्ता संभाल ले तू, उसके बाद सारी दुनिया तेरी, जहाँ जाना है जा.

गाइज आज पता है मैं आई वॉज ड्राइविंग टू माई वर्क एंड ऑल द लेसन्स एंड एवरी थिंग दैट आई नॉर्मली डू. और जो रास्ता मुझे 15 मिनट लगता है नॉर्मली, 15-20 मैक्सिमम, वहाँ पे मुझे 50 मिनट लग गया. एंड आई वॉज आई टेल यू वेयर इट वॉज ऑन नॉर्थ वेस्ट हाईवे इन डैलस, गोइंग फ्रॉम लाइक मिडवे रोड ऑल द वे टू लाइक एब्रम्स रोड इन डैलस. सो लाइक नॉर्थ डैलस से हम जा रहे हैं वे ईस्ट डैलस की तरफ. एंड ओ एम जी, वहाँ पे मुझे एक नहीं रास्ते में दो दो एक्सीडेंट मिले. एग्जैक्टली गाइज, डैलस में आजकल कुछ भी हो रहा है, रोज़ ही एक्सीडेंट वगैरह वगैरह दिखने को मिल रहा है. तो आप अपना ज़रूर ध्यान रखना. एंड जस्ट इन केस यू गेट स्टक इन एन एक्सीडेंट, देन प्लीज़ कॉल अप द लॉ ऑफिसर्स ऑफ उमर ख्वाजा, वेदर यू आर इन अ ट्रक कार एक्सीडेंट और स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट, और आपको बहुत ज़ोरों की चोट लगी है. देन उमर ख्वाजा, ही इज़ अ पर्सनल इंजरी अटर्नी, ही विल फोकस ऑन गेटिंग यू द मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन दैट यू गाइज डिजर्व. एंड यू गाइज कैन फोकस ऑन हीलिंग वाइल ही विल फोकस ऑन योर केस एंड मेक श्योर दैट यू गेट मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन. एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप नहीं जीतते हैं तो जैसे यू नो वी गेट वरीड अबाउट कॉलिंग द लॉयर्स एंड स्टफ कि यार इतनी हेफ्टी फीस कैसे हैंडल करेंगे लॉयर्स की. यू डोंट पे एनी थिंग अंटिल यू एक्चुअली विन, सो लेट हिम डू द वर्क एंड जस्ट गिव इट अ शॉट. यू नो यू नेवर नो वॉट कैन हैपन. सो कॉल 4693005046 और विजिट अटर्नी ओमर डॉट कॉम. ठीक है, तो गाइज आगे बढ़ते हुए हम एक दूसरा गाना लगाते हैं एंड आई होप यू इन्जॉय आज की प्लेलिस्ट. आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा डिस्कशन ऑन लव एंड अट्रैक्शन एंड ऑल ऑफ दैट आफ्टर 8 o'clock. मे बी वी विल स्टार्ट इट अ लिटिल बिट अर्ली, यू नो व्हाई नॉट, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता टू फिनिश एवरी थिंग दैट आई प्रिपेयर्ड फॉर यू गाइज. सो मे बी वी कैन स्टार्ट दैट कॉन्वर्सेशन अ लिटिल बिट अर्ली एंड 8 o'clock एज यूजल वील हैव अ गिव अवे गेम. सो स्टे ट्यून, स्टिक अराउंड, बिकॉज वी गॉट सम लॉट्स ऑफ फन स्टफ. एंड दिस इज जस्ट फॉर माई कॉलर्स, इफ यू आर ट्राइंग टू रिक्वेस्ट अ स्लो सॉन्ग और अ बैलेड और समथिंग लाइक दैट, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू प्ले इट फॉर यू, लेकिन 9 बजे के बाद, बिकॉज दैट्स वेन वी आर काइंड ऑफ वाइंडिंग डाउन. अंटिल 7 to 9, यू नो पीपल आर स्टिल ड्राइविंग, वी आर स्टिल इन काइंड ऑफ हाई एनर्जी, वी आर स्टिल ट्राइंग टू यू नो मूड गेट द मूड थम्पिंग, राइट? तो इसीलिए कोशिश करेंगे बैलेड्स एंड स्लो सॉन्ग्स जो है मैं बिल्कुल बजाऊंगी. जैसे मुझे अभी एक रिक्वेस्ट आई सैयारा के लिए, मैं बिल्कुल बजाऊंगी 9 o'clock के बाद, क्योंकि तब आता है सोने का टाइम. सो देन वन यू आर लिसनिंग टू कामिंग म्यूजिक और स्लो सॉन्ग, देन इट एक्चुअली फील्स राइट फॉर द मूड. यू नो सिंस आई एम अ म्यूजिशियन, ट्रस्ट मी आई नो वट द प्ले लिस्ट काइंड ऑफ गोज़ बाय. सो यू गॉट अ ट्रस्ट माई ओपिनियन ऑन दिस, राइट? तो विदाउट फर्दर डू लेट्स प्ले द सॉन्ग एंड आई विल कम बैक आफ्टर कपल ऑफ सॉन्ग्स.

भाई आपको पता है ना ये कौन सा महीना चल रहा है? यस, इट इज सितंबर 26, और इसी महीने आ रहा है भाई सोनू निगम. सो डोंट वेट, गो गेट योर टिकट. सोनू निगम लाइव इज गोना बी ऑन सितंबर 26 एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. योर फेवरेट सॉन्ग, दैट आइकॉनिक वॉइस, ऑल ऑफ दिस इज गोना बी लाइव. टिकट्स आर ऑलरेडी ऑन सेल ऑन टिकट मास्टर. अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉल 855-360-SHOWS, या फिर यू कैन ऑल्सो लुक फॉर फनेशिया के पेजेस पे. यूल गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन देयर ओनली. गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. इट्स गोना बी अमेजिंग. हिज कॉन्सर्ट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, एंड ऑफकोर्स फनेशिया इज द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर, द एक्सक्लूसिव ऑफिशियल मीडिया पार्टनर. तो taking this one, I'm going to play you a really nice song by Sonu Nigam, but unfortunately ek minute mein hum break mein jane wale hain, to just in case gana agar cut jata hai, don't worry, break ke baad gana dobara chal jayega. Yaar usme kya hai, chalo tab tak ke liye aap ye enjoy karo, music hi sun lo.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। This summer enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. Chicken tandoori, malai chicken tikka, paneer tikka, momo ya soya champ. अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. Dine in only at Tandoori Flame Garland, where every bite is a celebration.
3: ये तारा वो तारा हर तारा.
4: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
5: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
6: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
5: कैसे?
6: पेज 3 ईटरी?
5: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
6: ड्यूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
5: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
7: पेज 3 ईटरी. ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
8: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice. Sathiya.
9: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
10: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
8: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
11: तुमसे मिलके दिल का है.
10: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
8: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

And guys, we are back. हांजी हांजी लेकिन गाना तो खत्म नहीं हुआ, गाना तो अभी भी चल रहा है, तो पहले उसको खत्म करते हैं पहले.

हाँ जी, अब खत्म हुआ वो गाना. पहले ही मैंने बंद कर दिया. ऐसे थोड़ी ना हम लिसनिंग एक्सपीरियंस अपनी स्पॉइल करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे. तो गाइस, दिस इज इपी द हिपी एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM. और आज डेट है 10 सितंबर, कल 9/11 है. एंड यू नो देयर इज इट्स ऑब्वियसली नॉट द ग्रेटेस्ट डे फॉर अमेरिका. हाउ एवर, लेट्स गिव श्रद्धांजलि टू द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स. And let's do a big tribute, because that was not a nice thing. I remember I was very young when that happened, and I was still in India. And jab wo ho raha tha, my mom just turned on the news, kehte dekho dekho kya ho raha hai, what's happening. And it was quite a dreadful event, and so many people lost their lives. However, let's all think about them and keep them in our prayers for people who've lost their lives, people who've lost their loved ones. However, guys, aage badhte hue, आपको पता है ना गणेश चतुर्थी भी आ रही है. सो इफ यू हैव किड्स बिटवीन द एज ऑफ 5 and 12, देन यू कैन टेक देम टू मेक योर ओन क्ले गणेशा वर्कशॉप, विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन September 12th, विच इज दिस सैटरडे, इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, इंश्योर होम लोन्स एंड उमर ख्वाजा. Okay, and it's going to be super fun, because kids, you know, they love to get their hands dirty, especially when it comes to mud and all of that stuff. So this is a perfect opportunity for your children to make something out of clay. And of course, if they want to get in touch with their Hindu religion and all of that, this is a really good opportunity. Spots are limited. Make sure you register at ganesha.funasia.net to let your kids' inner creativity shine. Exactly, guys. तो आगे बढ़ते हुए गाइज, व्हाट अ नाइस सरप्राइज. नहीं, आज का वेदर, बारिश हो गई थोड़ी सी आते आते. आपने देखा, मुझे नहीं पता यहाँ इस साइड मकिनी साइड में बारिश हुई है कि नहीं, बट डैलस साइड में जहाँ पे मैं थी वहाँ पे तो काफ़ी अच्छी बारिश हो गई. लेकिन वी आर ओनली होपिंग कि थोड़ी सी बारिश पूरे DFW में अच्छे से और हो जाए, बिकॉज इट्स रियली हॉट. इसीलिए उसी के लिए लेट्स आस्क द यूनिवर्स और सम बारिश. ठीक है, इसीलिए ये बारिश का गाना सिर्फ आपके लिए.

एंड गाइज बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो वी हैव अ लिटिल रिक्वेस्ट. तो ये वाला गाना धर्मेंद्र जी के लिए, आप एकदम द वन एंड ओनली धर्मेंद्र जी. एंड ऑफ कोर्स दिस वन ऑल्सो गोज आउट टू माई फ्रेंड एंड माई कॉलीग ओवर हियर रिमिता, क्योंकि हम सारे विश करें कि यार थोड़ी सी बारिश हो जाएगी तो मूड हमारा वैसे ही अच्छा हो जाता है ना. तो चलो लेट्स होप फॉर दैट, लेट्स आस्क द वेदर गॉड्स.

बारिश का थीम जब हम बोल रहे हैं तो इस गाने को ना बोले तो कैसे चलेगा यार. ये तो ऑफकोर्स दी ओजी प्रेयर, भगवान गॉड्स, बारिश के देवता. पता नहीं कौन है बारिश के देवता, इंद्रदेव है वैसे तो, वो मौसम के देवता है ना. तो भाई इंद्रदेव को हम पुकारते हैं और कहते हैं भाई इंद्रदेव थोड़ी बारिश यहाँ भी ला दो. ये गाना मेरी अच्छी सी लिसनर के लिए समायरा, जो मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड भी बन चुकी है अब समायरा, ये आपके लिए.

ये नेक्स्ट गाना, वो गाना तो बहुत लंबा है, तो इसीलिए हम वी आर गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिक्वेस्ट। ये गाना डीजे जी के लिए, भाई बारिश के साथ एक कॉकटेल भी होनी चाहिए, व्हाई नॉट, राइट? आई नो, लेट्स सेट द मूड एंड मैनिफेस्ट द बारिश वाली एनर्जी।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
3: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
3: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
3: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
3: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG FinTax, your growth, our strategy.
5: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
6: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: जीनी हुकम मेरी अखा, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
8: मिराज लाउंज, चलिए मेरी अखा, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
7: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
8: नो प्रॉब्लम अखा, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
7: और एंटरटेनमेंट,
8: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
7: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
8: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Family ko chahiye North Indian, friends ko South Indian. Ab jaye to jaye kahan?
0: Simple, Basera Grand. One destination, double the flavor.
2: Matlab crispy golden dosa?
0: Yes, rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis aur ek delicious buffet jahan choices hi choices hain.
2: Wow, great food, full variety and everyone's happy.
1: Family dinner ho ya friends ke saath celebration, make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand, come hungry, leave happy together.
3: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
0: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
4: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
5: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन तो बैंकवेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
6: तुझे देखा तो ये जाना सनम.
7: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज. DFW, get ready to relive the magic of Kumar Shanu live, unforgettable 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts Plano. Gaiye, jhoomiye aur fir se jee lijiye apne favorite 90s ke gaane. Limited seats, free parking aur meet and greet options available. For tickets, visit eventbrite.com ya fir call kare 214-869-2668 par. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.

0: guys, without further ado, let's go into our giveaway game. तो भाई giveaway आपको पता है क्या है? Yes, it is the same one that we played yesterday and the one that we played the day before that. लेकिन आज का giveaway है क्या? पहले ये तो बता दूँ. आज का giveaway है from the Mirage Lounge for premium hookahs. अगर आपको premium hookahs चाहिए, delicious bites चाहिए, या फिर यू आर लुकिंग फॉर लाइव म्यूजिक डीजे नाइट्स, इंजॉय हैप्पी आवर ऑल द वे फ्रॉम मंडे टू थर्सडे 11 AM टू 6 PM, प्लस दे हैव लेडीज नाइट एंड कॉलेज नाइट, तो यू गेट रियली गुड डिस्काउंट्स. तो आज का गिव अवे अगर आप जीत जाते हैं, देन यू गेट अ चांस फॉर $20 डिस्काउंट ऑन अ बिल ऑफ $50. ओके, आज के विनर के लिए हम दो विनर्स चूज करेंगे, सो मेक श्योर यू डायल. तो गेम बहुत सिंपल है. मैं आपको एक बॉलीवुड मूवी की एक स्टोरी बताऊंगी, ऐसे ही रफ आइडिया बताऊंगी, ओके, इन माय वे, जैसे मैं बात करती हूँ वैसे करके. आपको मुझे मूवी का नाम बताना है, ठीक है? एंड दूसरा जो है, उस मूवी में आपको मुझे जो हीरोइन है उसका कैरेक्टर नेम बताना है, समझे? तो वेरी इजी, जो मूवी का नाम बताना है और मूवी में जो हीरोइन है उसके कैरेक्टर का नाम बताना है, नॉट द एक्चुअल नेम. तो अगर मुमताज़ है मूवी में तो डोंट टेल मी उसका नाम मुमताज़ है, आप मुझे बताइए उसका मूवी में नेम है आशा या जो भी है, व्हाटएवर. ओके, तो माय नंबर इज 972-235-5555. हियर वी गो. सो वंस अपॉन अ टाइम इन सम काइंड ऑफ अ लैंड, एक बड़ा इनोसेंट सा ब्रह्मचारी सा लड़का था, बहुत सीधा साधा, बहुत ही इनोसेंट था, मतलब भोंदू टाइप ही बोल सकते हो आप उसको. वो ना रहता था अपने अंकल के साथ, वो भी ब्रह्मचारी अंकल. वो कहते हैं दे यूज टू रन अवे फ्रॉम ऑल द लेडीज, कहते नहीं नहीं प्यार शादी ये सब में नहीं पढ़ो, सिर्फ अपनी कसरत करो, अपना अच्छा अच्छा खाना खाओ और लिव अ गुड लाइफ, वुमेन आर बैड. ओके, सो दैट वाज द होल डील. लेकिन क्या होता है, इसके सामने वाले घर में ना एक बड़ी सुंदर सी, ब्यूटीफुल सी, एकदम अप्सरा जैसी एक गॉडेस आ जाती है, एंड देन इसको हो जाता है प्यार. ही इज लाइक ओ ब्रो, व्हाट आर दीज फीलिंग्स दैट आई हैव फॉर दिस गर्ल, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था. आई यूज टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज गर्ल्स, लेकिन ये सामने ये आ जाती है, एंड नाउ ही वॉन्ट्स टू लाइक रियली इम्प्रेस हर एंड ही वॉन्ट्स टू मैरी हर. चलो इतने में ही हमारी स्टोरी के लिए कॉल आ गई. तो आपको बताना है कि मूवी का नाम क्या है. इट्स वेरी इजी, एंड हियर वी गो. हाय फाइनेंशियल रेडियो, कैन यू हियर मी?
1: या हाय, इज देयर मुझसे शादी करोगी?
0: नहीं, इट्स क्लोज दो, इट्स एन ओल्ड मूवी, बट थैंक्स फॉर ट्राइंग. हाय, कैन यू हियर मी?
1: शादी करोगी?
2: नहीं, इट्स क्लोज दो, इट्स.
0: हेलो, कैन यू हियर मी?
3: यस आई कैन.
0: तो पीछे ना अपना रेडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे अपनी आवाज आ रही है.
3: बंद कर दिया.
0: हाँ जी, हाँ जी. तो पहले तो अपना नाम बताइए और दूसरा मूवी का नाम बताइए.
3: मेरा नाम भास्कर.
0: भास्कर जी, हाँ जी,
3: जी. इस मूवी का नाम है पड़ोसन और हीरोइन का नाम जो
0: नहीं, अरे यार, हीरोइन का नाम आपको नहीं बताना था, वो मेरे सेकंड कॉलर के लिए था. कोई बात नहीं, पड़ोसन वॉज करेक्ट, लेकिन अब मुझे दूसरा कॉलर है. मैंने बोला ना दो विनर्स हैं, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए था.
3: चलिए ठीक
0: है, ठीक है, आप लाइन पे बने रहिए. अगर कॉल कट जाती है तो मुझे 5 मिनट में कॉल कर लेना, मैं आपका इन्फॉर्मेशन ले लूंगी तब. ठीक है
3: जी, चलेगा.
0: तब तक के लिए मुझे दूसरी कॉल लेनी पड़ेगी. गाइज, आई एम स्टिल टेकिंग वन मोर विनर. आपको मुझे बताना है कि एंड हियर वी गो. हाय, कैन यू हियर मी?
4: यस आई कैन हियर यू.
0: ओके, पहले तो अपना नाम बताइए.
4: मेरा नाम है विक्रम आहूजा.
0: विक्रम आहूजा जी, ओके. यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द हीरोइन इन द मूवी.
4: बिंदु, मेरी प्यारी बिंदु.
0: क्या बात है, बिंदु रे बिंदु, मेरे प्यारे है बिंदु, मेरी प्रेम की नैया बीच भवर में गुड़ गुड़ गोते खाए. आई लव दैट लाइन गाइज, मतलब सबसे दुनिया की सबसे आइकॉनिक गाने की लाइन वही है ना? आपको क्या लगता है? डू यू थिंक, डू यू एग्री?
4: Yes, I agree. And that's the clue, you know, when you ask ki, you know, kya ki heroine ka naam kya hai, I was sure ki wo kuch easy hoga.
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो गाइज, हमें दो विनर्स मिल चुके हैं. पहला विनर था भास्कर जी, जिन्होंने मूवी का नाम गेस किया, एंड दूसरे विनर है ऑफ कोर्स मिस्टर विक्रम आहूजा जी. जोर से तालियां बजाते हैं इनके लिए. एंड मैं गाना लगाती हूँ. विक्रम, प्लीज स्टे ऑन द लाइन, आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन. तो तब तक के लिए आप ये गाना सुनिए. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवी, दिस इज अ सॉन्ग जो हम गा रहे थे.

0: ना गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

हमें दो विनर्स मिल चुके हैं, भास्कर एंड विक्रम आहूजा जी. भास्कर अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज कॉल मी बैक सो आई कैन टेक योर इन्फॉर्मेशन एंड आई कैन गिव यू द प्राइज एंड आई कैन टेल यू हाउ टू रिडीम योर गिव अवे. एंड गाइज एक गाना और सुनते हैं, वेन यू कम बैक आफ्टर द सॉन्ग्स देन वी विल टॉक अबाउट द सेम स्टफ दैट वी वर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट, रिलेशनशिप्स एंड मोर रिलेशनशिप्स एंड न्यूरोसाइंस, बिकॉज दिस वीक्स थीम वॉज दैट. So let's talk about that right after these songs. And if you have a song request, this is the time to request some ballads. Yes, you can totally request for some slow songs.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make the Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
3: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट
4: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव
3: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स
4: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन
5: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
8: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
10: यार बॉस ने फिर से डांट दिया ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस
11: अरे रिलैक्स यू नीड अ कूल थेरेपी
10: थेरेपी वो तो बहुत महंगी है
11: नहीं कूल मतलब कूल चा थेरेपी
10: ये क्या होता
11: सिंपल चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन
12: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस
13: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन
14: जिंदगी एक रंगमंच है
15: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com
16: वी नीड टू टॉक
17: अब क्या हुआ
16: नथिंग इट्स नॉट यू
17: ओह नो
16: इट्स द डिस्टेंस
17: डिस्टेंस वी लिव 10 मिनट्स अपार्ट
16: अरे इट्स एक्चुअली नॉट यू इट्स दैट ड्राइविंग ऑल द वे फॉर माय सैल्स हॉट चिकन
18: इरविंग दैट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज ऑफिशियली ओवर सैल्स हॉट चिकन इज नाउ इन इरविंग योर क्रिस्पी चिकन लोडेड सैंडविचेस एंड बोल्ड सैल्स फ्लेवर्स जस्ट गॉट अ होल लॉट क्लोजर Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
19: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khan Zada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jabu Times available hai ek click par. TheJabuTimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Funasia.
20: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.
21: Guys, we are back. Yes, this is Ippy the Hippie and you're still listening to Funasia Radio 104.9 FM. And this is my show, An Evening in Dallas. guys, without further ado, let's get this show on the road. तो हम कल जैसे बात कर रहे थे, we were talking about the relationship stage of like falling in love and what happens inside your brain. What are those neurochemical things that are happening? Okay. कल मैं उसको खत्म नहीं कर पाई पूरी तरह से. We left it at why love feels like an addiction. We never got to it. But today we're going to finish this. लेकिन उसके पहले जैसे ही मैं यहाँ पे आई ना 7 बजे, मुझे एक कॉल आई, रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि प्लीज़ मैं 5 बजे से कॉल कर रहा हूँ, आप प्लीज़ ये वाला गाना लगा दो, मेरे को बहुत सुनना है. और मैं 5 बजे कॉल किया, मार्विन जी ने नहीं लगाया क्योंकि वो कुछ और उनका थीम चल रहा था. मैं अभी कॉल कर रहा हूँ, अभी कोई नहीं लगा रहा. मैंने कहा 7 बजे तो हमारा थोड़ा अप टेम्पो है. अब उनको सुनना था सैयारा का टाइटल ट्रैक, गाना बहुत अच्छा है बट हमारे वो थीम के हिसाब से नहीं बैठ रहा था. बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स नाउ, आपके लिए स्पेशली ये गाना, आई होप यू एंजॉय इट.

भाई पता है प्यार से बड़ा रिवॉर्ड क्या होता है? पेट, हंगर रिवॉर्डिंग. समटाइम्स व्हेन यू नीड दैट क्विक रिवॉर्ड, यू नो, एंड आपको समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें, ओ माय गॉड, हाउ डू आई सेटिस्फाई माय सेल्फ. आई तो फाइंड सम पीपल गो इन टू एल्कोहल एंड स्टफ लाइक दैट. आई ट्रीट माई सेल्फ विद अ नाइस नाइस डिनर, यू नो, एट अ नाइस प्लेस विद सम यमी फूड. इसीलिए यू गाइज नीड टू हेड डाउन टू Page 3 ईटरी, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू रिवॉर्ड योर ब्रेन्स एंड फॉरगेट अबाउट दैट पर्सन हु जस्ट डम्प्ड यू, देन यू कैन गो एंड एक्सपीरियंस देयर अमेजिंग सिजलिंग कबाब्स, फ्लेवरफुल चाट, फ्यूजन बाइट्स, मॉकटेल्स, बहुत कुछ है यार वहाँ पे खाने के लिए और पीने के लिए भी. ओके, गो टू Page 3 ईटरी एट Hub 121. इट्स राइट ऑन 121, आपको हाईवे से भी दिखेगा. एंड दिस इज वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर. चाहे ब्रंच, लंच, डिनर, डेट, डेट नाइट, जो भी है, यू कैन गो देयर. एंड या इफ यू वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लोर मोर एट Page 3 ईटरी.com. आप ये गाना सुन रहे, दिस नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट टू जिमरान. जिमरान वॉन्ट्स टू लिसन टू जूप रूप की रानी. मैं तो कह रही थी जूप की रानी. हम नया गाना बनाते हैं कॉल्ड जूप की रानी, सूप की रानी, नूडल्स का राजा. ओके, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फूड.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
3: हाँ.
2: घर रिलोकेट करनी है?
3: हाँ.
2: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
3: हाँ भाई हाँ.
2: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
4: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
5: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
6: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
8: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-

0: 1-888-9914 and take control of your financial future.
1: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
2: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
4: इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
5: मैं हीरो।
6: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
7: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
8: तुमसे मिलके दिल का है।
7: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

कभी किसी से प्यार किया, कभी किसी को दिल दिया,

गाइस हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप के बारे में एंड लाइक द वे इट काइंड ऑफ फील्स लाइक एन एडिक्शन. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी. सम पीपल हैव टेकन सम डिसीजंस व्हिच दे इन फैक्ट दे शेयर्ड विद मी अभी ऑन द कॉल टुडे. तो पहला कॉल आया था, मैं उनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि यू नो वी आर ट्राइंग टू कीप द आइडेंटिटी हिडन, बट दैट्स ओके, अनोनिमस. तो उन्होंने बोला दैट शी वॉज इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन फॉर 14 ईयर्स. शी स्टिल टुगेदर विद हिम, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. हाउएवर 3 साल टूवर्ड्स द, अभी 14 साल हो गए उनको रिलेशनशिप में, लेकिन वो पहले 3 साल के बाद उनका लॉन्ग डिस्टेंस शुरू हो गया. एंड हर पार्टनर गॉट अ जॉब इन द US एंड ही मूव टू द US एंड दे शी वॉज स्टिल इन इंडिया. लेकिन उसके बाद शी वॉज वन ऑफ दोज काइंड ऑफ गर्ल्स हु वॉज रियली रियली करियर ड्रिवन, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग हर सेल्फ, यू नो, स्टैंडिंग ऑन हर ओन फीट. एंड इन फैक्ट शी गॉट अ जॉब इन जर्मनी, बट प्यार में वो इतना, यू नो, शी गॉट लॉस्ट इन द प्यार सो मच दैट शी डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस हर करियर एंड नाउ शी इज़ अ डिपेंडेंट इन द US. ओके, एंड शी इज़ ऑफ कोर्स वेरी हैप्पी विद हर पार्टनर, ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन कई बार हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके हम प्यार में वी मेक सर्टन डिसीजंस विच इज़ कम्प्लीटली अनलाइक अस. जैसे इंटॉक्सिकेशन के बाद कई बार यू नो यू मेक दैट ड्रंक फोन कॉल टू योर एक्स एट मिडनाइट एंड यू आर लाइक आई मिस यू सो मच. आई मीन इट्स नॉट दैट सिली, बट दीज आर लाइक बिग डिसीजन. सो वेन यू मेक अ डिसीजन इन लव, थिंक अबाउट वॉट दैट फ्यूचर इज ऑल्सो होल्डिंग फॉर यू. ओके, देन द नेक्स्ट वन वॉज अगेन शेयर्ड विथ मी बाय वन ऑफ माई लिसनर्स एंड ही सेड दैट मैनी ईयर्स अगो ही फेल इन लव विद दिस गर्ल और वो प्यार में इतना पागल हो गए थे दैट ही रियली वॉन्टेड टू प्रोवाइड फॉर हिज गर्लफ्रेंड और वाइफ. आई डोंट थिंक ही मैंशनड वेदर दे गॉट मैरिड और नॉट, बट दे वर इन सम प्लेस इन सियाटल नियर वॉशिंगटन एंड वहाँ पे हिज पार्टनर रियली रियली रियली वॉन्टेड टू बाय अ हाउस एंड हाउसेज देयर आर एक्सपेंसिव. सो दे बॉट लाइक सम 1 मिलियन डॉलर हाउस एंड एवरी थिंग. और फिर उसके बाद शी वॉज अपेरेंटली वेरी मनी माइंडेड, वेरी कैलकुलेटिव. एंड वेन द रिलेशनशिप एंडेड ऑल शी वॉन्टेड टू डू वॉज जस्ट टेक द हाउस इन हर नेम. इवेंचुअली दे डिड सॉर्ट इट आउट, बट देन ही रिग्रेट्स इट. ही इज़ नाउ इन टेक्सस एंड ही सेज दैट आई डिड नॉट इवन थिंक आई मेड सच स्टूपिड डिसीजन्स जस्ट टू प्लीज माई पार्टनर. दैट समटाइम्स वी डोंट थिंक वट वी डू इन लव. तो इसीलिए गाइज, अगर आप भी कुछ ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज के बारे में सोच रहे हैं, आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी वाइज डिसीजन. वेदर यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड और यू आर ऑलरेडी इन अ मैरिज और यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, यू हैव टू थिंक अबाउट योर फाइनेंशियल फ्यूचर. बिकॉज भैया, पैसा जितना भी हम बोलें कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, प्यार बहुत होता है, लेकिन पैसा ज़रूरी होता है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो, टू हैव अ फैमिली, एवरी थिंग, यू नो. वी लिव इन सच अ सोसाइटी, अनफॉर्चुनेटली दैट काइंड ऑफ हैपन्स. तो इसीलिए अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं एंड समथिंग एंड यू नीड सम हेल्प, देन यू रीच आउट टू माई टाइम इक्विटी. माई टाइम इक्विटी लेड बाई CPA सुधीर पाई. दे हेल्प इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. वेदर यू आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ, रिटायरमेंट, ग्रोइंग योर इन्वेस्टमेंट, माई टाइम इक्विटीज ऑफर्स डिजाइन personalized design solution around your goals. Visit mytimeequity.com or call 469-702-1272 today. You can also call me and share your stories, that something that you've done which kind of feels like an addiction in love and maybe you regret it later, you know, something that is completely out of your personality.

तो गाइस हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप्स के बारे में. तो वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज हम लोग क्या करते हैं रिलेशनशिप्स में, कई बार हमें खुद भी नहीं पता चलता. एंड समटाइम्स इट लाइक आई सेड इट फील्स लाइक एन एडिक्शन. एंड समटाइम्स सम ऑफ आर यू नो स्टेप्स और द एक्शंस दैट वी टेक यू शुड एक्चुअली थिंक अबाउट इट लाइक एज इफ यू नो जब आप शराब पी के या ड्रिंक करके आप जब भी कोई रैश डिसीजन लेते हो या वेन एवर यू आर इंटॉक्सिकेटेड एंड यू आर नॉट थिंकिंग या गुस्से में भी कई बार गुस्से में हम रैश डिसीजंस लेते हैं एंड वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट. ट्रीट लव लाइक दैट. डोंट जस्ट गो इनटू ब्लाइंडली इनटू समथिंग एंड मेक दिस लाइक बिग डिक्लेरेशन कमिटमेंट. यू नो थिंक अबाउट इट. एवरीथिंग हैज़ टू बी थॉट थ्रू. नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं लव लैब टाइम. दैट्स काइंड ऑफ लाइक अ टंग ट्विस्टर. क्विक फैक्ट्स अबाउट फॉलिंग इन लव ब्रेन के साइड से. फैक्ट नंबर वन, फॉलिंग इन लव मेजरेबली अफेक्ट्स योर स्लीप. एंड दैट इज अ फैक्ट. यू नो इट, आई नो इट, एवरी वन नोज इट. ओके, रिड्यूस सेरोटोनिन, एलिवेटेड कोर्टिसोल विच इज बेसिकली अ स्ट्रेस हॉर्मोन, राइट? इट्स ऑल ओवर इंस्टाग्राम दीज डेज, यू शुड नो अबाउट इट. इन अर्ली रोमांस आर लिंक टू सम पीपल एक्सपीरियंसिंग जेन्युइनली डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स even when the relationship is going wonderfully, okay? That racing mind, raat ke 2 baje, feeling has a real chemical basis. Fact number two, the so-called love hormone, quote-unquote, oxytocin, actually starts rising during this phase too. Even before deep attachments form, it's released during physical closeness, eye contact, did you know that? Touching, just like holding hands or something like that. Laying early groundwork for bonding stage, which we will cover tomorrow. Tomorrow to nahi, ab Monday ko cover karenge usko. Fact number three, studies using brain imaging have found that looking at a photo of a new romantic partner, jaise aap dating app pe scroll kar rahe hain and you find a new potential romantic love partner, activates a reward circuitry more strongly on an average than looking at a photo of a close long-term friend. Even a friend the person loves deeply but platonically. तो अगर आपको अपने दोस्त से प्यार है लेकिन वो वाला प्यार नहीं, अलग टाइप का प्यार है, तो आपका ब्रेन उस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा जिस तरह से एक स्ट्रेंजर की फोटो देख के करेगा जिसको सडनली आप यू गेट अट्रैक्टेड टू. यू नो वी टॉक्ट अबाउट दोस फ्यू रूल्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमने आई थिंक दो दिन पहले बात करी थी. ओके, फैक्ट नंबर फोर, द सो कॉल्ड हाई फेज, यू नो हाई इन लव phase of a new love appears remarkably consistent across the cultures. So, chahe aap America mein ho, India mein ho, UK mein ho, Africa mein ho, kahin bhi ho, they are the same everywhere, okay? Fisher's cross-cultural research, including the brain scan studies conducted in China as well as the US, found strikingly similar VTA and caudate activation patterns, suggesting that it isn't a culturally constructed experience, but a deeply rooted, like evolved human trait. Isn't that amazing? So, ye gana sunte hain and then I will see you after 9:30.

भाई वो गाना तो हम सुनते रहेंगे, लेकिन वो गाना सुनने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू दैट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज़ हियर एंड दे हैव अ रियली कूल प्लान एंड दिस इज़ नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस यू गाइज. अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड और यू आर जस्ट यू नो यू आर इन बिटवीन जॉब्स एंड यू लॉस्ट योर हेल्थ कवरेज, देन डोंट वरी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज़ देयर. दे हैव अ प्लान फॉर $85 अ मंथ where you can get primary care visits, follow-ups, preventative care, chronic diseases, medication management, telehealth when appropriate, care coordination, plus 20% savings on eligible self-pay labs, imaging and diagnostic services. So you don't have to wait कि अभी इंडिया कब जाएंगे और इंडिया जाके सारे चेकअप्स कब कराएंगे. नो, यू डोंट हैव टू वेट फॉर दैट. यू कैन जस्ट कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259 और विजिट passionhealthphysicians.com. Passion Health, eligibility applies, eligibility restrictions apply. This program is not a health insurance. So if you're looking at this, this is a good option in case you cannot afford health insurance.

0: तो गाइस जाने से पहले मैं एक और चीज़ बता देना चाहूँगी कि टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज़ बिन वर्किंग इन DFW फॉर द लास्ट 13 ईयर्स एंड दे आर नाउ कॉल्ड लनॉक्सी मेडिकल. दे वे ओपन अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन एंड दे आर लेड बाय डॉक्टर मंदीप आचार्या. चाहे आप प्राइमरी केयर ढूंढ रहे हैं, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, CT स्कैंस, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स, हिमालयन मेडस्पा सर्विसेज, इफ़ यू लुकिंग फॉर एनी ऑफ दीज, they are open 8 a.m. to 8 p.m. they're open 7 days a week, so make sure you book an appointment or just walk in, it don't matter. I will see you on Monday. Bye.
1: yun to kahi to humne to pandit ji ko bata diya hai ki pure hafte ka bhaada tay ho gaya. वैसे आप इतनी

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
3: अजी सुनते हो?
4: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
3: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.
5: अजी सुनते हो? सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
2: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
5: सच में? सब संभालेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
3: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
4: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
5: तुमसे मिलके दिल का है.
3: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
4: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Funny Asia Radio.

Thank you for tuning into 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल धमाल फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल। ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।
1: हंसते हंसते रो पड़ा।
2: अपनी फैमिली से और झूठ नहीं बोल सकती, I'm sorry।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: और मैं फूल फेंक रहा हूं।
1: तुम?
0: अरे और फिर तुम जाने लगती हो और मजाक कर रहा था ना बिल्ली।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

Variety is the spice of our station. Yeah, 104.9 FM.

0: अजी सुनते हो?
1: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of Tax Planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM only on Fun Asia Radio.

0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
1: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
3: तुमसे मिलके दिल का है।
1: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
4: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Fact, they see.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
7: सो रुको जरा सबर करो
8: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है स्टे ट्यून्ड टू फनेशिया

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनेशन।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM।
1: तन्नी आज तू मुझे देख लेगा ना तो 100 टाइम्स आई लव।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
6: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
7: तुमसे मिलके दिल का है।
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
6: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: हाँ भाई सेठी,
1: हाँ जी मनी पाजी,
0: पहुंच गए हैं।
1: पहुंच गया मैं। अरे अरे अरे अरे पाजी, घर तो बड़ा सही है, इत्थे तो पार्टी करनी बनती है।
0: ओ पार्टी दी कसरत तेनु हाले, पार्टी कर दे हैं तू।
2: पाजी उस दौरे से घर लेके बाद एक बार भी यहाँ आए हो?
0: हो गए बहुत साल, हो गए दादी नु मिलन आया सी एक बारी।
1: पाजी तुहाडी दादी मैनू बिल्ली वर्गी क्यों लग रही है?
0: दूर लगता है तू पैग लाए होया।
3: तू इधर कर, तू सो जा, आराम कर।
1: नहीं पाजी, एक ही बोतल पीती है, ज्यादा नहीं पीती, पर दादी बिल्ली वर्गी लग रही है।
3: ओए मेरी दादी नहीं है, उसे गोरी दी दादी होनी है। ओए तू पै जा, ओए तू सो जा,
0: मेरी फ्लाइट है, तू सो जा।
1: पर दादी

0: IT is the spice of our station.
1: Yeah, 104.9 FM.

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi, this is Konkana Sen Sharma, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून्ड।
2: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन।
3: ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG FinTax।
2: ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर ख्वाजा
3: इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Bor in Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
9: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
10: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
9: कैसे?
10: पेज 3 ईटरी?
9: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
10: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
9: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
11: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
12: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
13: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, walk in anytime, 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
14: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
15: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
16: डील कहाँ?
15: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड द डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
17: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज डील्स दूर नहीं, पास है।
18: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: Dad, property papers kahan hai?
3: Laptop mein.
2: Investment?
3: Google Drive.
2: Insurance? Passwords?
3: Beta, don't worry. Mujhe sab pata hai.
2: Dad, wahi to problem hai. Sirf aapko pata hai.
1: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
4: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
1: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
5: Don ko pakadna mushkil hi nahi.
6: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे.
7: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
1: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
6: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
1: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
12: We need to talk.
13: अब क्या हुआ?
12: Nothing. It's not you.
13: Oh no.
12: It's the distance.
13: Distance? We live 10 minutes apart.
12: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
1: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
14: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

0: फैबुलस फ्यूजन।
1: अजी सुनते हो?
2: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
3: दी ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग एजी फिनटैक्स। सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो।
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
4: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
6: तुमसे मिलके दिल का है।
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
4: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
7: I'll be talking more about Sonu Nigam, the Revolution concert that's coming, as well as some other events that are happening here in town. But today, ladies and gentlemen, the date, 9/11, 25 years ago. It was the day that the whole world watched. Number here, 972-235-55. 55.

0: rounding off this segment of the program, I do have some messages that are coming up for you from our sponsors, our advertisers, our partners, and we thank them for their support. And we thank you for making the Funasia Network a part of your daily lives now and every day.
1: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
2: हाँ.
1: घर रिलोकेट करनी है?
2: हाँ.
1: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
2: हाँ भाई हाँ.
1: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
3: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Arey yaar, ghar mil gaya.
2: Ghar to dekh raha hoon. Lekin it's hard to find a realtor who offers great service and also cashback at closing.
0: Isliye call karo Ajay Prabhu of Beam Real Estate. Ajay is an experienced realtor. Wo sirf ghar nahi dikhate, har property ka honest review dete hain, pros and cons samjhate hain, best price negotiate karte hain, builder incentives dilwate hain aur closing par cashback bhi.
2: Seriously? Achhe service bhi aur cashback bhi?
0: Bilkul. Visit ajayprabhu.com and see why so many people are raving about him.
3: Ye tara wo tara har tara.
0: Arre arre arre. Dallas ke aasman mein itne sare tara nahi. Business owners ke liye to sirf ek hi tara kaafi hai. Tara Commercial Energy. 2002 se Texas ke hazaron businesses ka trusted energy partner. Hotels, gas stations, warehouses, medical facilities, retail stores aur office buildings. Competitive pricing, personalized energy solutions aur exceptional customer service. Tara Commercial Energy. Powering Texas businesses for over two decades. Call 844-428-2808 or visit taraenergy.com today. Tara Commercial Energy. Jo aapke business ko roshan rakhe.
2: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
2: ये क्या होता?
4: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
0: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
11: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
11: ओ, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
10: सच में? सब संभालेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
12: Queen Victoria की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? तो वैसे ही लगेंगी मलिक।

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
4: भूख लगी
5: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है.
6: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
7: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
8: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
7: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your...

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
2: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
1: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
2: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
3: जिंदगी एक रंगमंच है
4: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com. फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
1: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
5: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
1: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
5: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
2: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
6: ये तारा वो तारा हर तारा.
7: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
8: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

15 minutes past 10 o'clock and you're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Gupshup Gali. Aur agar aapke phone mein 20 tabs open hai but dimag mein 200, congratulations, aaj ka show officially aapke naam hai. This is Rumita aur agle saare 3 ghante hum morning ko sirf survive nahi, full entertainment ke saath revive karenge. Pehle baat hogi hamare invisible mental load की, you know, घर से grocery खत्म होने तक, school form से office deadline तक, वो सब कुछ जो officially किसी list में नहीं, but permanently हमारे दिमाग में चलता ही रहता है यार, like सुबह alarm बंद करने के बाद से लेकर लंच का प्लान बनाना, ऑफिस का ईमेल रिप्लाई करना, बच्चों का schedule चेक करना, और वो काम जो कल करना था वो अभी तक नहीं करना. आज होगी आपकी और मेरे मेंटल लोड की जस्टिफिकेशन या क्लारिफिकेशन या सिंपली उसकी डिस्कशन. और क्योंकि आज फ्राइडे है तो जाहिर सी बात है फिल्मी फ्राइडे तो हो गए. ओटीटी रिलीजेस, फ्रेश गॉसिप, फ्रेश बॉलीवुड न्यूज, गेम्स, मूवीज, मस्ती एंड ऑफ कोर्स बहुत सारा म्यूजिक. तो कॉफी उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि आज का दिन चाहे कितना भी बिजी हो, एंटरटेनमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही टैब है एंड दैट इज फनीशा रेडियो 104.9 FM.

0: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make the Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
2: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
1: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
2: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
1: और एंटरटेनमेंट,
2: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
1: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
2: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
3: बेटा 95% आए?
4: हाँ मम्मी।
3: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
5: मेरा?
3: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक एडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं, तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
12: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
11: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
12: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
13: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
14: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
15: Sign
16: milna mushkil hai, lekin pleno mein जबरदस्त थाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
17: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.

0: You're listening to 104.9 FM Funny Shah Radio. This is Gupshup Gali with me, Ramita. And aaj baatein ho rahi hai aapke dimag mein jo tabs khule hote hain na unke bare mein. You know, kabhi notice kiya hai ki nahi pata nahi, but sach mein ye gaur karne wali baat hai ki ghar mein sabke phones smart hai, phir bhi reminder ek hi insaan ko banna padta hai. Like घर पे दूध खत्म हो गया, डॉक्टर अपॉइंटमेंट ट्यूसडे को है, स्कूल में थीम डे है, गिफ्ट खरीदना है, बिल ड्यूज है, और जब आप उस इंसान से पूछो कि तुम्हें याद क्यों नहीं रहा, जवाब आता है कि तुमने रिमाइंडर ही नहीं किया. वाह, मतलब गलती भी मेरी और कैलेंडर सर्विस भी मेरा. तो अब अगर यू नो, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे फ्यूचर को कंट्रोल करती है, हमारे प्रेजेंट को कंट्रोल करती है, और जब फ्यूचर को कंट्रोल करने की बात आए तब फिनांसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो घर पे अगर किसी को याद रहे या ना रहे, फिनांस के बारे में अगर चिंता करना टोटली बंद करना है तो आई हैव अ डेफिनेट रिकमेंडेशन फॉर यू, एंड दैट इज AG FinTechs. यू नो, बिकॉज उनकी ट्रस्टेड टैक्स, अकाउंटिंग, पेरोल, बुक कीपिंग और बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज आपके और आपके बिजनेसेस की जो फिनेंशियल सिक्योरिटी है उसको मेक श्योर करेंगी कि अगर कुछ भी हो जाए, चाहे घर पे आप मतलब दुनिया भर की चीजें याद ना रख पाओ, ये चीज जो है आपके फिनेंसिस जो है, ये चिंता आप अनिल ग्रंथी पे छोड़ दो. तो कॉल करो उन्हें 4699429888, दैट्स 4699429888, या सिंपली विजिट agefintechs.com.
1: Malika Tilfari. Kiss me, Sierra. Lime mascara.

You're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. Back to back, two songs by A.R. Rahman. And there is a coincidence ke bahut sari similarities hai in dono gaano mein. Ab ye intentional hai ya fir purposeful, wo to nahi pata. But this is a legend, A.R. Rahman, that we are talking about. Ek aur legendary musician ki baat karte hai, jinka aaj hai concert, that is Unforgettable 90s Live in Concert Kumar Shanu, which is happening at the Robinson Fine Arts in Plano. Ab hum sab jo 90s kids hai, millennials hai, we have all grown up listening to his songs. और क्या नॉस्टैल्जिया होगी. मैं तो सोच सोच के मतलब पागल हो रही हूँ कि आज जो कॉन्सर्ट्स जा रहे हैं, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, आई नो आई एम गोइंग टू श्योरली हैव अ ग्रेट टाइम विद दोज टाइमलेस मेलोडीज एंड अनफॉरगेटेबल 90s रोमांस. तो अगर आपने अभी तक आपके टिकट्स नहीं बुक किए हैं तो चलिए कोई बात नहीं, कर लीजिए बुक. लेट्स एंजॉय दिस. फॉर टिकट्स यू कैन रीच आउट एट evenbright.com और sulekhatickets.com और यू कैन कॉल 214-869-2668 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन.

0: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
1: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
3: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
4: मैं हीरो।
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
6: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
7: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
8: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
7: Fikar not. We have the perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
9: Hello guys, this is me, Kinjal Dave, and you are listening and watching Fun Asia Radio.

45 minutes past 10 o'clock. You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is Gapshup Gali with me, Rumita. And this is Friday, ya fir Friday. And weekend has officially or unofficially started. You know, weekend aate hi hum bolte is bar I am gonna sleep at least 8 se 10 ghante to complete mujhe neend chahiye hogi during the weekends. Fir matlab maine khud hi aaj subah bola hai ki Saturday Sunday I'm going to sleep straight away. Fir sofa pe baithte hi hamara dimag kuch aur बोलना या कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता है. आई मीन लॉन्ड्री हो सकती थी, क्लॉजेट ऑर्गेनाइज हो सकता था, ग्रॉसरीज भी कर सकते हैं. और देखो जी, शर्मा जी के जो वर्कआउट शेड्यूल है ना, जो आप देख पाते हो आपके बालकनी से कि वो वर्कआउट कर रहे हैं, वो भी सुबह से उठकर 2 बार वर्कआउट कर चुके होंगे इन दिस वीकेंड. और आप उस सोफे पे बैठ के ये सब चीज़ें सोच रहे हैं, मतलब बॉडी रेस्ट कर रही होगी बट गिल्ट आपका दिमाग में, दैट इज डूइंग ओवर टाइम. और यू नो, कभी कभी प्रोडक्टिव होने का मतलब हर मिनट कुछ ना कुछ करना नहीं होता है भाई. रेस्ट भी इज ऑल्सो अ काम, बस उसका रिजल्ट हम एक्सेल शीट में नहीं दिखा पाते. तो आप बिना गिल्टी फील किए अगर रेस्ट कर पाते हैं, या फिर रिलैक्सिंग टाइम पे भी मेंटल टू डू लिस्ट आपका चलता रहता है, आई वॉन्ट टू नो हाउ यू मैनेज everything, because भाई मेरे से तो नहीं हो रहा है. स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. अगर आपको पता है तो मुझे भी सिखा दो यार, बैठी हूँ यहाँ पे आपके कॉल के इंतजार में.

तरकीबे ही तो वही तो नहीं आता है हमें कि सोचना क्या करना है यार, दिमाग में इतने सारे टैब्स क्यों खुले रहते हैं। अब सोचो डे टू डे लाइफ में अगर इतने सारे टैब्स हैं, इतने सारे काम हैं, इतने सारे टू डू लिस्ट है जो चेक इन करना होता है, तो अगर घर में कोई बड़ा ओकेशन है और स्पेशल ओकेशन है, अगर शादी, ग्रेजुएशन पार्टी, हाउस वार्मिंग या कोई भी स्पेशल सेलिब्रेशन है, तो तब कितने काम होते हैं। तो अपने से लोड हटा के अगर आप एक वेनेसा इवेंट को दे देंगे तो कितना लाइफ इजी सिंपल हो जाएगा ना। यस एग्जैक्टली, बिकॉज वेनेसा इवेंट्स ब्रिंग्स इट ऑल टुगेदर, चाहे वो वेन्यू हो, डेकोर हो, फोटोग्राफी हो, हॉस्पिटैलिटी हो, केटरिंग सर्विस हो। और डेफिनेटली अगर डेकोर की बात करें तो डेकोर बाय द सिग्नेचर इवेंट्स और केटरिंग बाय द बसेरा ग्रैंड। तो अपने आप लोड क्यों लेने का, लोड देने का टू वेनेसा इवेंट्स। हरी बसेरा को कॉल कीजिए एट 469-442-8770, दैट्स 469-442-8770, बिकॉज वेनेसा इवेंट्स इज योर सेलिब्रेशन पार्टनर। तो वो साथ रहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा, राइट? ऑल इज वेल।

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
4: लैपटॉप में.
3: इन्वेस्टमेंट?
4: गूगल ड्राइव.
3: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
4: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
3: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
5: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
6: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
5: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
9: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा.
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
11: वी नीड टू टॉक.
12: अब क्या हुआ?
11: नथिंग, इट्स नॉट यू.
12: ओह नो,
11: इट्स द डिस्टेंस.
12: डिस्टेंस? We live 10 minutes apart.
11: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
13: Irving, that long-distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches, and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
14: Documents ya parcel bhejni hai?
15: Haan.
14: Ghar relocate karni hai?
15: Haan.
14: Gaadi bhi transport karna hai?
15: Haan, bhai, haan.
14: Toh phir tension kyun le raha hai? SFL Worldwide को कॉल करो.
16: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
17: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाए. Choctaw Casino and Resort Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to gain.

एक ऐसी तारीख जो हमें कुछ पल ठहर कर याद करने पर मजबूर करती है। 9/11 की ट्रेजेडी में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, आज हम उन्हें बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं। हमारे थॉट्स उन्हीं सभी परिवारों के साथ है जिनके लिए उस दिन की यादें आज भी उतनी ही गहरी है। साथ ही हम सल्यूट करते हैं उन फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और हमारे ऑर्डिनरी सिटीजन्स को जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और ह्यूमैनिटी दिखाई। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि नफरत से कई ज़्यादा ताकत, इंसानियत, एकता और कंपैशन में होती है। और फनीशिया 104.9 FM और हम सभी पूरे टीम की तरफ से हम सब उन सभी को याद करते हैं, सम्मान देते हैं, एंड श्योरली वी विल नेवर फॉरगेट।

You're listening to 104.9 FM Funny Shah Radio. मैं हूँ रमिता and this is गपशप गली. Well, कहते हैं home is where the heart is. घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं बनता. It's actually the place where we feel safe, loved and completely ourselves. और हम सबके मन में अपने सपनों का जो घर है उसका कहीं ना कहीं एक तस्वीर जरूर छुपा होता है. किसी का कोई ब्यूटीफुल बैकयार्ड चाहिए, किसी को अपने घर में किसी को सुंदर सा एक बैकयार्ड चाहिए, किसी को स्पेशियस किचन चाहिए और किसी को बस एक कोजी कॉर्नर जहां चाय के साथ थोड़ा सा सुकून मिल जाए. और अब आप भी अगर सोच रहे हैं कि अपने सपनों का घर कैसे बनाएंगे, मैं बताती हूँ कैसे. जस्ट थिंक दैट योर सपनों का घर इज पॉसिबल और वो पॉसिबिलिटी मेक श्योर करेंगे ड्रीम होम मॉर्गेज. सिंस 1998 दे हैव बीन हेल्पिंग फैमिलीज टू अचीव होम ओनरशिप और नेशन वाइड उनकी पर्सनलाइज मॉर्गेज सोल्यूशन, चाहे वो घर खरीदना हो या रिफाइंस करना हो, यू कैन ट्रस्ट द एक्सपर्टीज दे हैव. सो कॉल कीजिए आज ही हुसैन पंजवानी को एट 9722455626. That's 972-245-5626. Or you can simply visit dreamhomemortgage.com because they are making dream homes happen. और कहते हैं जैसे कि मैंने शुरू किया था, home is where the heart is. अब heart आपका कहाँ है वो तो आपको ही पता है. This is a request by Mahmood, so I think he will enjoy this song.

आए हाय हाय, सालों हो गए यार ट्रेन पे बैठे हुए. यू डू यू फील द सेम जो मैं फील कर रही हूँ अभी. यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनीशिया रेडियो. दिस इज गपशप गली विथ मी, दैट इज रमिता. और आज बात चल रही है टाइम मैनेजमेंट की, वर्क मैनेजमेंट की, दिमाग में मल्टीपल टैब्स की, जो खुले होते हुए भी हम कुछ काम प्रॉपरली ढंग से नहीं कर पाते. रात को जब सोते हैं तब दिमाग में ऑटोमेटिकली टू डू लिस्ट की चेक इन पर से ज्यादा ना करने वाले काम ना वो पॉपअप होते हैं जरूर. और हम सब की लाइफ में एक काम जरूर होता है जो रोज लिस्ट में जरूर आता है बट कंप्लीट कभी भी नहीं होता है. किसी का क्लोजेट ऑर्गेनाइजेशन, किसी को फोटोज प्रिंट करानी है, किसी का अनरेड ईमेल अकाउंट तो अब नेशनल डेट बन चुका है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि नया काम तुरंत कर लेंगे लेकिन वो एक पुराना काम देखते ही ना बॉडी ऑटोमेटिकली टायर्ड फील करने लगती है. यार क्यों होता है, मेरे साथ तो बहुत ही होता है. आपके टू डू लिस्ट का परमानेंट मेंबर कौन है? वो काम जो महीनों से बस डेट चेंज करके नेक्स्ट डे पर जा रहा है बट वो खत्म ही नहीं हो रहा. सोचो, सोचते रहो, सोचो और सोच के बताओ मुझे. स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. तब तक मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ यार, कॉफी वॉफी पी लेती हूँ. आप भी पियो, एंजॉय करो.

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: Yaar, boss ne fir se daant diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
8: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
8: ये क्या होता?
9: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
11: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
12: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navnita Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
13: Call Namita Khemka at 347-449-4242.
14: Phone uthaye, number dabaye. 347-449-4242.
15: Sadia!
16: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
17: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
18: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
19: तुमसे मिलके दिल का है।
17: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
18: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
20: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: दिल का आप क्या करने वाले हो वो तो मुझे पता नहीं, आज फ्राइडे 11th of September आप क्या करने वाले हो वो तो मुझे पता नहीं, वीकेंड में आप क्या करने वाले हो वो भी मुझे पता नहीं, बट 26 सितंबर को आप क्या करने वाले हो या कर सकते हो वो मैं रेकमेंड कर सकती हूँ, बिकॉज सोनू निगम विल बी हियर इन डैलस लाइव इन कॉन्सर्ट विथ हिज कॉन्सर्ट रेवोल्यूशन सैटरडे 7th September 26th at 8:30 PM at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. बताने की जरूरत नहीं है, जताने की जरूरत नहीं है, समझाने की भी जरूरत नहीं है वॉट सोनू निगम इज फॉर द इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री और द फिल्म इंडस्ट्री. सो इफ यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक जल्दी जल्दी टिकट काट लीजिए एट द टिकट मास्टर, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल 855-360-SHOWS. दैट्स 855-360-SHOWS. ऑल योर फेवरेट सॉन्ग्स और वो आइकॉनिक आवाज, एवरीथिंग विल बी लाइव. एंड फनीशा नेटवर्क इज एन एक्सक्लूसिव पार्टनर ऑफ रेवोल्यूशन. सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट.
1: कम ऑन गर्ल, बी द बीट. या दिस, चेक दिस आउट नाउ. कम ऑन, रिफ्रेश. With the beat in. Yeah. Check us out.

किसी और के प्यार में चमकने की कोई जरूरत नहीं है. दैट इज व्हाट आई फील. अपने ग्लो अप में, अपने कॉन्फिडेंस में और थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करने के बाद भी यू कैन चमको फाई लाइक अ जुगनू. और पैम्परिंग की बात मैं क्या कर रही हूँ, नो आई एम नॉट रेफरिंग टू एनी स्पा, बट यू कैन हैव अ शॉपिंग थेरेपी फॉर योर सेल्फ, अ ज्वेलरी अपग्रेडेशन, क्योंकि PMJ ज्वेलर्स इज हियर. यस, द 60 years ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप इज राइट हियर इन मेन स्ट्रीट, इन फ्रिस्को एक्चुअली, ऑन द मेन स्ट्रीट, वेयर यू कैन डिस्कवर ज्वेलरी दैट टेल्स योर स्टोरी. एक्सप्लोर स्टनिंग गोल्ड, डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शंस फॉर एवरी सेलिब्रेशन एंड माइलस्टोन. यानी कि जीवन में कोई भी स्पेशल ओकेशन हो, गो and bring that glow up home with the PMJ jewels in your house. Associated with Mahesh Babu and Sitara Ghattamanani, PMJ is a name trusted by generations, and that is here in the heart of Frisco on the main street. So discover your and upgrade your jewelry collection with PMJ. You're listening to 104.9 FM Funny Shah Radio. This is Gapshap Gali with Rumita.

सुन रहे हैं 104.9 FM फनी शेयर रेडियो. दिस इज गपशप गली विथ मी रमिता. इट्स 8 मिनट्स पास 12 o'clock. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. 11th of September एंड स्पेशली अ फ्राइडे. सो मॉर्निंग की सीरियसनेस को दीजिए थोड़ा इंटरवल, बिकॉज अब चलने वाला है फिल्मी फ्राइडे. एंड यू नो फ्राइडे ने अटेंडेंस लगा दी है, वीकेंड ने ट्रेलर दिखा दिया है, एंड फिल्मी फ्राइडे की पिक्चर अब शुरू हो रही है. आज हम करेंगे बातें लास्ट वीक के रिलीजेस की, उनकी रिपोर्ट कार्ड थिएटर में एंड ओटीटी में क्या क्या फ्रेश है मेन्यू में, एंड बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़े गेम्स एंड बहुत सारा फिल्मी मसाला. सो आज विथ कुमार शानूज कॉन्सर्ट विच इज हैपनिंग एट द रॉबिन्सन आर्ट सेंटर इन प्लेनो, यू नीड टू नो आज का प्लान क्या है विथ मी रुमिता ओनली ऑन 104.9 FM फनीशिया रेडियो.

कलीन भैया, गुड्डू और मुन्ना का ये जो फेमिलियर भौकाल, एक्शन, डायलॉग्स और डार्क ह्यूमर, सब कुछ बिगर एंड लाउडर है। फैंस के लिए नॉस्टैल्जिया का फुल पैकेज है और परफॉर्मेंसेस एज यूजुअल आर एंटरटेनिंग एज वेल एज स्टनिंग फैंटाबुलस। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम, फिल्म 3 घंटे से भी लंबी है। मेकर्स शायद भूल गए थे कि ना थिएटर में स्किप इंट्रो और वॉच एट 1.5x स्पीड नहीं होता है, उसका ऑप्शन थिएटर में नहीं मिलता है। और मिर्जापुर के फैंस के लिए मसालेदार बिग स्क्रीन रीयूनियन तो जबरदस्त चलेगा, बट अगर टाइटर एडिटिंग होती ना तो भौकाल और भी पावरफुल होता। तो इस वीक भी अगर आप नहीं, लास्ट वीक की तरह अगर इस वीक आप मिस कर चुके हो तो ये वीकेंड है, यू कैन स्टिल गो एंड वॉच इट। और वो बदतमीजी मत करना, अब इसके लिए भी OTT पर वेट नहीं करना, मूवी बनाइए यार, थिएटर में जाके देख ही लो।

आपको मिर्जापुर से डायरेक्ट वासेपुर ले जाने का ये आइडिया कमाल का था, है नहीं? यू आर लिसनिंग टू 104.9 एफएम फनीशिया रेडियो, दिस इज गपशप गली एंड अभी फिल्मी फ्राइडे इज ऑन, जहां पे हम बात करेंगे आज की नई रिलीज विच इज Oh my God, है वन. You know, अक्षय कुमार और सैफ अली खान की रीयूनियन को देखकर नॉस्टैल्जिया तो हमारा बोलेगा, राइट? ओले ओले यो, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, यू नो ये दिल लगी नहीं याद है? अरे यार थोड़ा तो गूगल कर लो. बट हैवान देखकर रिव्यूअर्स की जो मतलब रिव्यू है, वर्डिक्ट है, वो तो ओले ओले से डायरेक्टली उफ उफ जा रहा है. यू नो प्रियदर्शन हैवान में अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान आर गेटिंग रीयूनाइटेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. बट यही बट में मैं अटकूंगी, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू डिस्करेज यू टू वॉच इट, बट देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू नो बिफोर यू हेड ऑन टू द थिएटर्स और आर विलिंग टू परचेज द टिकट्स. अक्षय कुमार इज प्लेइंग अ ब्लाइंड मार्शल आर्टिस्ट वाइल सैफ एंटर्स डार्कर एंटागोनिस्ट टेरिटरी. माइंड यू सैफ इज द एंटागोनिस्ट हियर. दोनों स्टार्स की केमिस्ट्री में कुछ एंटरटेनिंग मोमेंट्स एक्चुअली है, एक्शन भी है और वो ओल्ड स्कूल रेफरेंसेस भी है, लेकिन फिल्म का टोन कभी एक्शन कभी कॉमेडी कभी नॉस्टैल्जिया, मतलब जीपीएस भी कंफ्यूज है एंड इट इज स्टिल रिकैलकुलेटिंग इट्स जॉनर. सो अक्षय सैफ रियूनियन देखने की क्यूरियोसिटी अगर हो तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई, बट स्ट्रॉन्ग स्टोरी एक्सपेक्ट करके मत जाइएगा. स्टार पावर है डेफिनेटली, हाई है एक्चुअली, बट स्क्रीन प्ले की बैटरी बहुत ही लो है.

0: Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
3: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
2: कैसे?
3: पेज 3 ईटरी?
2: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
3: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
2: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
4: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
5: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
1: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
6: एक और लड्डू ले लो।
7: थोड़ी और बिरयानी?
6: अरे अमरीका जाके थोड़ी मिलेगा।
8: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए।
9: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
10: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
11: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

नहीं, ओटीटी भी हमारे फिल्मी डीएफडब्ल्यू के लिसनर्स बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए तो इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास. एंड सही जवाब देने वाले का नाम और सही जवाब के साथ साथ सबसे पहले जवाब देने का नाम अभी मैं बताने वाली हूँ. सबसे पहले आंसर तो बता दूँ, इट इज फ्रॉम द मूवी मोनिका ओ माई डार्लिंग. एंड जिन्होंने, जिस साहब ने फन पिज्जा किचन से ये $10 गिफ्ट कार्ड जीता है, उनका नाम है गिरीश बर्दानिया. कंग्रेचुलेशन गिरीश, यू कैन avail this gift card from the Frisco location and enjoy the new Mexican inspired pizza lineup. I mean it is new, brand new, that's why I'm telling you ki ye bhi try kar lo agar aapke kuch personal favorites pehle se hi nahi hai. To wahan pe hoga Polo Loco, the seafood packed Sonor Cameron and Fiesta Veggie. I mean har bite ye bold, exciting and it is made to impress you. So go ahead and enjoy any pizza of your choice with the $10 gift coupon that you have won on Phoenicia Radio. This is the Gupshup Gali and the Filmy Friday segment is on with me, Ramita.

एक अलग सी एनर्जी है इस गाने में. यू नो आई डोंट नो इज इट बिकॉज ऑफ द फ्रेश पेयरिंग ऑफ श्रेया घोषाल एंड अभिजीत, और अभिजीत का ये जो वॉइस है दैट वी मिस सो हार्ड. आई नो दिस मूवी तो बहुत ही पिट चुकी थी, बट ये गाना फिर से वापस से थैंक्स टू इंस्टाग्राम वॉज ट्रेंडिंग. एंड जब भी आई प्ले दिस सॉन्ग और आई लिसन टू दिस सॉन्ग, अलग सी खुशी महसूस होती है, एनर्जी महसूस होती है. यू लिसनिंग टू 104.9 FM फनी शिया रेडियो, दिस इज रमिता, और अब टाइम है फ्रेश बॉलीवुड अपडेट की. एंड द अपडेट इज कि दृश्यम द कंक्लूजन का ट्रेलर ऑफिशियली आ चुका है. इट स्टार्स अजय देवगन, टबू एंड जयदीप अलावत. और गेस व्हाट, द फिल्म इज गोइंग टू रिलीज ऑन 2nd of October, यानी कि 2 अक्टूबर. अब बस ट्रेलर देखते ही ऑडियंस ने कैलेंडर चेक करना शुरू कर दिया एंड अपने आप को यू नो वी ऑल स्टार्टेड रिवाइजिंग के 2 अक्टूबर को विजय सलगांवकर ने आखिर क्या क्या किया था. एक फैमिली ट्रिप ने बॉलीवुड ऑडियंस को डेट इतना जोरों से याद नहीं करवाया जितना कि हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक ने भी. आई मीन दे वर नॉट सक्सेसफुल इनफ टू put the spotlight on 2nd of October as Drishyam the movie had made us think about it. और ये movie ना मतलब खत्म ही नहीं हो रही है, thriller बढ़ता ही जा रहा है, it is getting chewing-gum की तरह stretch होती जा रहा है, और finally director ने नाम ही दे दिया कि चलो भाई इसको खत्म करो, wrap it up and let's actually close the case. I want to ask you कि कौन सी suspense film का जो twist आपको जेन्युइनली शॉक कर गया था. इफ यू हैव वॉच्ड इट इन दृश्यम, आई नो आप बस प्लीज डोंट टेक दृश्यम्स नेम, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू से, बट कोई भी स्पॉइलर दिए बगैर अगर आप सिर्फ मूवी का नाम बता सकते हैं देन एक्चुअली कन्वर्सेशन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और भी हो सकती है.

0: झुमका
1: 12:55 बाय द स्टूडियो क्लॉक, यानी कि वक्त हो चुका है कि मैं आपको टाटा बाय बाय अलविदा कह दूं। दिस इज रुमिता साइनिंग ऑफ एंड टेकिंग अ लीव फ्रॉम फिनिशिया 104.9 FM। आप बिल्कुल घमासान वीकेंड एंजॉय कीजिए, रिव्यूज अपने ऑनेस्ट रखिएगा, पॉपकॉर्न थोड़ा ऐसा एक्स्ट्रा रखिएगा, और वीकेंड का जो ये बैकग्राउंड है ना, वो वीकेंड का ये जो पूरा सिनेमा स्कोप है ना, उसको बैकग्राउंड में नहीं, फुल स्क्रीन पर एंजॉय कीजिएगा। दिस इज रुमिता साइनिंग ऑफ अगेन।

Mal.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
3: हाँ.
2: घर रिलोकेट करनी है?
3: हाँ.
2: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
3: हाँ भाई हाँ.
2: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
4: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
5: सच में? सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
7: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
12: जीनी, हुकम मेरे आका.
13: हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
12: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका. लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
13: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
12: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
13: और एंटरटेनमेंट,
12: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में है.
13: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
12: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
14: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.

A very, very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio. Thank you so much for connecting with us this afternoon. मैं हूँ किरण आपके साथ. वैसे तो आप मुझे सुनते हैं जी Monday through Friday 2:30 से 5 तक every day आपके afternoon drive time में मैं रहती हूँ आपके साथ. आज मुझे आपके साथ ये 1.5 घंटा और मिला है. आज हमारा शो 1 से लेके 5 तक आपके लिए आएगा. मैं किरण आपके साथ स्टूडियो में मौजूद रहूंगी. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. आपको कोई बात करनी है, कोई थीम के हिसाब से कोई और वो करना है तो डेफिनेटली आप कॉल कर सकते हैं. अच्छा जी, कुछ थोड़ी सी आइटनरी आपको आज की बता दूं. आज का हमारा एजेंडा क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हमेशा सुनहरी किरण पे आपके लिए डिफरेंट फ्लेवर्स लेके आती हूँ. चीजें खटखट करके चेंज हो रही होती हैं ताकि कहीं भी कुछ ऐसा मोनोटोनस या बोरिंग ना हो जाए. तो हम आज स्टार्ट करते हैं ये 1 पहला. वी आर गोइंग टू बिगिन विद द मेलोडीज ऑफ 80s, क्योंकि जी चारों तरफ 80 के दिहाई के ट्रेंड ने मेरे तो दिमाग को फ्राई कर दिया है. जब रील फोन खोलो तो 80s, how would I look in 80, how would I look in 80. So, मैंने कहा कि चलिए फिर 80s का लुक तो हो गया, 80s की वो सुनहरी यादें भी जी लेते हैं जिन्होंने 80s को बनाया था इतना म्यूजिकल और मेलोडियस. तो 1 से 2 तक हम करेंगे 80s, 2 से 3 तक मैं आपके लिए लेकर आऊंगी मिक्स पॉट. आप जानते हैं मैं हमेशा फ्राइडे को आपके लिए लेकर आती हूँ जिसमें कुछ पुराने गाने होते हैं और उन गानों से जो मुझे नए आजकल के दौर के गाने याद आते हैं, उन लफ्जों से जो मैं कनेक्ट करती हूँ, वो मैं आपके लिए एक मिक्स पॉट बना के फूलों का नहीं मिक्स पॉट गुलदस्ता लेके आती हूँ. 3 से 4:30 तक हमारा होता है जी किड्स जंक्शन, जहाँ बच्चा पार्टी हमें कॉल करती हैं, अपनी पसंद के गाने बताती हैं. दिस इज एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू किड्स. और फिर हमारे साथ होते हैं चिल्ल पार्टी ऑन किड्स जंक्शन, यानी कि आप ही का कोई बहुत ही प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा या बच्ची हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं जो मेरे साथ को होस्ट करते हैं चिल्ल पार्टी को. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव थ्रू आउट दिस आफ्टरनून 1 से 5 तक, यू एंड मी टुगेदर.

लेड बाय सीपीए सुधीर पाई, माय टाइम इक्विटी आपको ऑफर करता है पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसी के साथ रियल एस्टेट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स और साथ ही साथ रिटायरमेंट प्लानिंग एज वेल. सो कोई भी आपका, आप कह लीजिए, फाइनेंशियल डिसीजन आपने लेना है, चाहे रिटायरमेंट हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो, तो आप माय टाइम इक्विटी से कॉन्टैक्ट कीजिए. दे विल बी एबल टू गाइड यू, हेल्प यू, एंड यू नो जस्ट देयर इज नो हार्म इन गिविंग देम अ कॉल एंड डिस्कसिंग व्हाट you're looking for. That number is 469-702-1272. 469-702-1272 is the number. Ya phir aap unki website visit kar sakte hain, which is mytimeequity.com. Achha ji, ye jo gana aap sun rahe the, ye liya gaya tha film, dekhiye, Jaanbaz se. Ji haan, if I am right. Jaanbaz mein hume nazar aaye

कपूर और साथ ही साथ डिम्पल कबाडिया और श्रीदेवी भी छोटे से रोल में मौजूद थी. फिरोज खान तो खैर एक छोटे से रोल में वो भी मौजूद थे और शक्ति कपूर थे इस फिल्म में. एन आउटस्टैंडिंग मूवी, अ सुपर हिट ऑफ इट्स टाइम. दिस वॉज 1986. आज मैं आपके लिए वो 80s का ट्रेंड जिसने मेरे और आपकी रील्स को फ्लड किया हुआ है उस ट्रेंड को बताने लगी हूँ आपको कि वो 80s कैसे 80s थे और उनका म्यूजिक कैसा म्यूजिक था. द नेक्स्ट वन इज तू, तू है वही.

गाने बहुत सारे हैं, आपकी रिकमेंडेशंस भी आ रही हैं. अगर आपकी रिकमेंडेशन फिट कर सकी तो जरूर करूंगी जी. दैट इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, ये जो गाना आप सुन रहे थे ये लिया गया है फिल्म ये वादा रहा से. 1982 में ये वादा रहा फिल्म रिलीज हुई थी, जो कि एक रोमांस फिल्म थी जिसमें ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लों और टीना मुनीम नजर आए. राखी और गुलजार और शमी कपूर भी थे. स्टोरी जो है वो इस फिल्म की, गोइंग बैक टू 1982, थोड़ी सी ज्यादा मॉडर्न इन अ वे आप ये कह लीजिए कि जो लड़की होती हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर वो चेहरा बदल के वापस आती हैं, उनका ऑपरेशन होता है या जो भी, और फिर वो क्या शानदार चेहरा होता है, फिर वो टीना मुनीम बन जाती हैं. पूनम ढिल्लों जो हैं वो टीना मुनीम बन जाती हैं, और फिर कहानी कैसे आगे चलती है और ये गाना कितना बड़ा रोल प्लेयर होता है उन दोनों की जिंदगी में एक दूसरे को जानने और पहचानने के लिए. वेल, दैट वॉज द स्टोरी ऑफ ये वादा रहा. 1980s के कुछ क्लासिक्स आपके लिए प्ले कर रही हूँ. अच्छा, मूड्स 1980 के हर तरीके के थे. जैसे हमने शुरू किया एक तो कम जिंदगानी, दैट वॉज एन एब्सोल्युटली पार्टी मूड. फिर उसके बाद हम इस रोमांस के ऊपर आए, कंप्लीट रोमांस, बेहतरीन पार्टी, बेहतरीन रोमांस. और अब मैं आपको एक गजल टाइप चीज सुनाने वाली हूँ जो कि मूवी एतबार से ली गई थी. आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह की आवाज में दिस इज एन एब्सोल्यूट सूदिंग नंबर. कहते हैं किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, वफा की राह में घायल वो प्यार आज भी है.

फिल्म एतबार से सुन रहे थे आप ये गाना डिंपल कपाडिया और साथ ही साथ राज बब्बर सुरेश ओबरॉय हमें इस फिल्म में नजर आए. दिस फिल्म वाज काइंड ऑफ आप कह लीजिए एक थ्रिलर फिल्म थी जो कि मुकुल आनंद ने डायरेक्ट की थी और इट वाज अ रीमेक ऑफ अल्फ्रेड हिचकॉक्स 1954 थ्रिलर डायल एम फॉर मर्डर. तो जो है काफी पसंद किया गया था इस फिल्म को, इंटरेस्टिंग थी. मुझे अब कंप्लीट स्टोरी इसकी याद नहीं है, जब मैंने देखा था तो शायद बहुत ही या तो छोटी होंगी या फिर बहुत अरसे पहले की बात है. सो अब आई रियली डोंट रिमेंबर. But this song was definitely one of those ghazals jo ke yaad reh jati hain aapko. Acha ji, agla gana aapke liye lined up hai. This is one of the cutest love stories ever. Naam bhi love story hi hai. Lekin usse pehle aapko bataun ki khane ka time hai, bhook lag rahi hai aapko aur ghar pe bilkul nahi khana pakana, kuch bahar se khana hai. Lekin ghar jaisa flavor to har hal mein chahiye. To phir tandoori flame, Garland mein located hai ji. Tamam aapke North Indian favorites jaise ke sizzling kebabs, tandoori platters, rich curries, fresh hot naan. मतलब हर प्लेट जो है, हर तरह का आपका जायका जो है वो आपको यहां मिलेगा. और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि बिल्कुल घर जैसा होम स्टाइल पंच के साथ. दिस इज तंदूरी फ्लेम फॉर यू लोकेटेड इन गार्लैंड.

0: और इसी के साथ ब्रेक पे जाते हुए आपको बताते चलें जी कि अगर आप टेक्सास में बिजनेस ओनर हैं तो ऑफ कोर्स यू आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशंस, और ऐसी सिचुएशन है तो तारा कमर्शियल एनर्जी इज वेयर यू नीड टू you know go. They proudly serve Texas businesses. They have been serving since 2002. Competitive rates hain, reliable services hain, aur sabse important baat, customized energy plans hain according to your needs. Call them 844-428-2808 844-428-2808, ya phir aap visit kar sakte hain unki website which is taraenergy.com. that is T-A-R-A taraenergy.com.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
6: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
8: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
9: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
10: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
11: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
12: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
10: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
12: वेट, इतना सब और प्राइस?
10: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
13: मैं हीरो।
14: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
15: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
10: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
16: तुमसे मिलके दिल का है।
15: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
10: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
17: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Funasia Radio.
18: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Funasia Radio.

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM।
1: मिक्स स्पॉट में आप सबको एक बार फिर वेलकम कहती हूँ। आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण आज एक्सटेंड हो गया है जी, 1 बजे से आपके साथ मौजूद हूँ। 5 बजे तक आज हमारा सिलसिला गानों का और म्यूजिक का यूं ही जारी रहेगा। फ्राइडेज का खासा है, कुछ पुराने और कुछ नए गाने, और उसके बाद किड्स जंक्शन। दीज आर द टू स्पेशल थिंग्स दैट वी डू ऑन फ्राइडे, और फ्राइडे को स्पेशल बनाती हूँ इस ब्यूटिफुल म्यूजिक के साथ। आप भी मेरे साथ रहते हैं 9722355555 के थ्रू। तो जी, मिक्स स्पॉट में हमेशा जैसे आप जानते है, मैं एक पुराना गाना प्ले करती हूं और उसके उससे जो मुझे उसकी वर्ड से कोई एक वर्ड उस गाने में आता है या कोई एक ऐसी बात आती है जिससे मुझे कोई नया गाना याद आता है, तो वो आपके लिए प्ले करती हूं। तो ये जो गाना आपने सुना, देखा एक ख्वाब, तो ये सिलसिले हुए तो उसी से मुझे एक गाना याद आया, मूवी दुलारा का। दुलारा में गोविंदा और करिश्मा कपूर थी और उसका एक बड़ा ही खूबसूरत गाना है, सिलसिला शुरू हो गया, वही आपके लिए प्ले करने लगी हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि अगर आप H1B F1 L1 या कोई भी और नॉन इमिग्रेंट वीजा लेना चाहते हैं और यू आर प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेजिडेंसी, तो फिर द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता इज हेयर टू हेल्प यू। अटर्नी सीमा मेहता और उनकी एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज करती है जी एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीजा, स्पर्म लेबर सर्टिफिकेशन एज वेल एज US सिटीजनशिप। तो कोई भी आपका सवाल है इन जो मैंने अभी आपको बात चीजें बताई उनमें से लेके, या कोई भी और इमिग्रेशन का आपका सवाल है, तो अटर्नी सीमा मेहता और उनका लॉ ऑफिसर्स और उनकी टीम इज रेडी एंड ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू। आप अपने सवाल को इस ईमेल आईडी पे सेंड कर दीजिए एंड देन दे विल गेट बैक टू यू एज सून एज दे कैन। दैट ईमेल आईडी इज info@seemamehtalawfirm.com। वंस अगेन आपके लिए ईमेल आईडी रिपीट कर रही हूं, info@seemamehtalawfirm.com। With that, this is the Law Offices of Seema Mehta, here to help you with all your immigration needs. And with that, let's move on to this newer song in Mixpot. Silsila se yaad aaya mujhe ye gana.

विमल कुमार की दुलारा फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना और मिक्स स्पॉट वंस अगेन एक बार आपको बता दी चलूं, पुराना गाना प्ले किया जाता है और उससे कोई ऐसा वर्ड में मुझे याद आता है या कोई ऐसा गाना याद आता है नए दौर का, वो मैं आपके लिए प्ले करती हूँ। दैट इज मिक्स स्पॉट, यानी कि एक मिक्स्ड गुलदस्ता पुराने और नए गानों का। अब आगे बढ़ रहे हैं जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं कि अगर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके लिए ये अपडेट लेकर आए हैं कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या फिर आप पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके नेटवर्क में नहीं आते तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके लिए लेकर आए हैं अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद दिस मेंबरशिप व्हिच इज पैशन हेल्थ डायरेक्ट। $85 अ मंथ में आप ये मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं और आपको इसके साथ क्या मिलेगा, प्राइमरी केयर विजिट्स होंगे, साथ ही साथ फॉलो अप एंड प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिजीज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ भी होगी वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड, केयर कोऑर्डिनेशन और प्लस 20% सेविंग्स ऑन एलिजिबल सेल्फ पे लैब्स, इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज एज वेल। दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, सम एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस डू अप्लाई। तो अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है इसके हवाले से तो आप पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर को फौरन कॉल कर लीजिए। द नंबर इज 214-666-6259। वंस अगेन दैट नंबर इज 214-666-6259। या फिर आप उनकी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए विच इज पैशन हेल्थ physicians.com. Once again, that number is passion, that email, that website is passionhealthphysicians.com.

1981 की फिल्म अरमान से लिया गया था ये गाना. रामबा हो आनंद सागर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जी. ये फिल्म बड़ी एक यूनिक ब्लेंड था ऑफ पेट्रियोटिक फ्रीडम स्ट्रगल्स एज वेल एज रेट्रो क्लब म्यूजिक. और आपको इस फिल्म की एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, दैट दिस फिल्म इज लूजली बेस्ड ऑन द 1942's हॉलीवुड क्लासिक कैसाब्लांका. किसने नहीं देखी कैसाब्लांका? नहीं देखी तो अभी थोड़ा सा ऑब्वियसली अब आज के दौर में थोड़ी हमें स्लो लगेगी. हमारी अटेंशन स्पैन की तो बिल्कुल ही कोई हिसाब ही नहीं रहा. 10 सेकंड की रील से ज़्यादा लंबी हो जाए तो हम कहते हैं यार क्या बोरियत है. लेकिन फिर भी कैसाब्लांका अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर चेकआउट कीजिए. सो कुछ लूजली बेस्ड है उसके ऊपर दिस वॉज मूवी अरमान. अच्छा रामबा हो मैं नाचूँ तुम नाचो से मुझे एकदम से जो पहला गाना दिमाग में आया वो है नाचो नाचो नाचो. तो फिर वो नाचो नाचो आपके लिए लगाने लगी हूँ. दिस इज टेकन फ्रॉम द मूवी RRR.

लगाओ हरेला ऊंचा पाओ यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो, नाचो।

मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना से, जो सबसे पहली चीज मेरे जहन में आई वो ताल फिल्म का गाना, इश्क बिना क्या जीना यारों। लेट्स प्ले दैट एंड हेड ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक।

मिक्स पॉट सुन रहे हैं आप ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण आपके साथ आज एक बजे से मौजूद हूँ. पांच बजे तक बहुत कुछ आपके लिए लेके आएंगे. दो से तीन तक मिक्स पॉट का सिलसिला जारी रहेगा. तीन बजे से लेके ऑनवर्ड्स इट विल बी किड्स जंक्शन. बच्चे अपनी पसंद के गाने रिक्वेस्ट कर सकते हैं. देन वी विल हैव चिल पार्टी जहां आप ही के बच्चों में से कोई एक प्यारा सा आरजे हमारे साथ आएगा और मेरे साथ शो को होस्ट करेगा. व्हाट एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल इवनिंग वी हैव लाइंड अप और अर्ली आफ्टरनून आप कह सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड और बिल्कुल चैनल चेंज मत कीजिए. बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए लाइंड अप है. अच्छा ये फिल्म ली गई ये गाना

एक प्यारा सा आरजे हमारे साथ आएगा और मेरे साथ शो को co-host करेगा. What an absolutely beautiful evening we have lined up, और early afternoon आप कह सकते हैं. So stay tuned और बिल्कुल चैनल चेंज मत कीजिए, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए लाइंड अप है. अच्छा, ये फिल्म ली गई, ये गाना लिया गया था फिल्म नमक हलाल से. नमक हलाल में अगर आपको याद हो, एक बड़ा फेमस डायलॉग था अमिताभ बच्चन साहब का, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश. उस सीन के बारे में कहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी ने डायरेक्टर जो हैं इस फिल्म के, प्रकाश मेहरा साहब, उनको कहा कि आप, मतलब जब वो रिकॉर्ड कर रहे थे, इसे इम्प्रोवाइज कर रहे थे, तो उनको कहा कि आप कमरे से बाहर जाके खड़े हो जाइए, मुझे अकेला रहने दीजिए इस कमरे में, क्योंकि व्हेन आई एम ट्राइंग टू डू दिस और रिकॉर्डेड और आपकी शक्ल में देखता हूं तो मुझे हंसी आ जाती है. तो जाहिर है इट वॉज अ फनी सीन, तो दैट इज वाई प्रकाश मेहरा साहब स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम एंड अमिताभ बच्चन जी ने इस डायलॉग को अकेले रिकॉर्ड कराया, ताकि कोई और उनको हंसा ना सके या उनको हंसी ना आए किसी चीज से. तो फिल्म नमक हलाल का एक छोटा सा किस्सा ये भी, वैसे पग घुंघरू बांध से जो नया गाना मुझे याद आया वो मोहब्बतें फिल्म का याद आया, विच इज पैरों में बंधन, कुछ ऐसी ही बात है. लेट्स लिसन.

और क्या आप तैयार हैं उस अनफॉरगेटेबल म्यूजिकल नाइट के लिए जब आ रहे हैं एक ऐसे स्टार डालस में जिनकी आवाज को बॉलीवुड में कभी फरामोश नहीं किया जा सकता. दिस इज सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट. जी हाँ, एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन हैपनिंग ऑन सैटरडे सितंबर द 26th एट 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. आपके पसंदीदा गाने, आपकी पसंदीदा आवाज में आपकी पसंदीदा पर्सनालिटी खुद आपके सामने मौजूद होगी लाइव सिंगिंग फॉर यू. व्हाई यू डोंट रियली वांट टू मिस दिस. टिकट्स अवेलेबल हैं आपके लिए टिकट मास्टर पे. ticketmaster.com पे लॉग ऑन कीजिए और अपने सोनू निगम रेवोल्यूशन के टिकट्स जल्दी से ले लीजिए. कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो फिर 855-360-SHOWS 855-360-SHOWS इज वेयर यू नीड टू कॉल. रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन Asia Network. You're tuned into Mix Spot right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran. This is another beautiful number from the movie Rocky.

कुछ गाने सच में रोमांस की डेफिनेशन होते हैं. दिस इज डेफिनेटली डेफिनेटली वन ऑफ दोज सॉन्ग्स फॉर मी. ऑफ कोर्स सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं जी. 1981 की मूवी रॉकी से लिया गया था ये गाना. संजय दत्त की ये डेब्यू फिल्म थी जिसे उनके फादर सुनील दत्त ने डायरेक्ट किया था. ये मूवी संजय दत्त कई बार इस मूवी का जिक्र करते हैं ऑब्वियसली बिकॉज इट वॉज वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर हिम. नरगिस जी जो उनकी मदर थी, शी वेटेड टू सी संजय दत्त ऑन बिग स्क्रीन फॉर सो लॉन्ग. कितनी दुआएं, कितनी प्रेयर्स उन्होंने की. लेकिन आयरनी हालात की आप ये देखिए कि 3 May 1981 इज द डे व्हेन शी पास्ड अवे फ्रॉम कैंसर, जबकि मूवी का प्रीमियर था May 7, 1981, 4 दिन पहले. और जो है जब मूवी का प्रीमियर हुआ तो सुनील दत्त साहब सबसे आगे बैठे हुए थे और उनके साथ एक सीट खाली थी जो कि नरगिस जी के लिए डेडिकेट की गई थी. दैट वाज कुछ द मूवी वाज अ सुपर हिट, अ ह्यूज सक्सेस. संजय दत्त बिकेम एन ओवरनाइट स्टार. लेकिन कुछ खुश कहानियों, वो कहते हैं ना हैप्पी स्टोरीज के पीछे कुछ बड़े ही सैड मोमेंट्स छुपे होते हैं.

0: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
2: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
1: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
2: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
1: ये क्या होता
2: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
3: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
4: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल.
5: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा.
6: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
7: हेलो,
8: मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है.
7: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन.
4: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल. 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट. सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM. दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
9: क्या मतलब?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
9: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
11: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: Sadia. कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
14: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
4: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
15: तुमसे मिलके दिल का है.
14: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
4: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
16: ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स.
17: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM.

जी हाँ, ब्रेक पे जाते हुए आपके लिए गाना लगाया था, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। और उससे जो नया गाना मुझे याद आया वो ये वाला आया, गजर ने किया है इशारा, द लेटेस्ट वर्जन फ्रॉम द मूवी अजहर। आप सुन रहे हैं मिक्स स्पॉट, अभी अराउंड 20-23 मिनट्स मजीद मैं मिक्स स्पॉट आपके साथ करने वाली हूँ। पुराना गाना प्ले करती हूँ और उसके किसी वर्ड से या किसी उस चीज़ से मुझे कोई नया गाना याद आता है तो उसको आपके लिए प्ले किया जाता है। अगला गाना जो मैं प्ले करने लगी हूँ, आशा भोसले साहब मैडम की आवाज, खूबसूरत तरीन ये गाना। अब आपने मुझे ये बताना है कि ये पुराना गाना सुन के कौन सा नया गाना आपके जहन में आया, कोई लफ्ज अगर टैली हो जाए तो बहुत अच्छा है ताकि हम कोई लिंक बना सकें। चंडीगढ़ बाइट्स एंड एलन की तरफ से ये गिव अवे भी आपके लिए लाई हूँ, तो आपकी मेहनत बेकार नहीं होगी। यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग $10 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर, और आप इंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो सबसे पहले तो ये कि आप chandigarhbites.com पे लॉग ऑन ज़रूर कीजिए, उनकी वेबसाइट देखिए, रेस्टोरेंट जाइए तो आपको पता होना चाहिए वो लोग क्या ऑफ़र कर रहे हैं, क्या उनका मेन्यू है, यू नो, सो डू योर रिसर्च, लॉग ऑन chandigarhbites.com। और इसी के साथ आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि लंच थाली स्पेशल लगता है उनका मंडे थ्रू फ्राइडे, जिसमें रोटेटिंग डिशेस होती हैं, कोई आपको बोरियत नहीं है कि एक ही डिश मिलती है हर रोज़ उनका मेन्यू रोटेट होता है, सो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। Do enjoy that. They are located off McTermott Drive in Allen. और अगर आप जो है जीतना चाहते हैं ये $10 off your dine in bill of $50 or more, तो ये गाना सुनिए और मुझे बताइए कि इसकी निस्बत से कोई भी वर्ड आपके जहन में आया या कोई नया गाना आपके जहन में आया तो वो प्ले किया जाएगा 972-235-5555।

जी हाँ, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बड़ा अच्छा फेयर ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। एनीवेज जी, चंडीगढ़ बाइट्स एंड एलन की तरफ से ये गिव अवे आपके लिए आया था, $10 का गिफ्ट कार्ड, एक्चुअली $10 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर। और आप सब ने ही ये बड़ी मजे के मुझे गाने बताए। किसी ने जो है वो बताया जी दिलबर दिलबर, और जो बाजी मारी जिस गाने ने, तीन चार कॉल्स आई और सबने मुझे एक ही गाना बताया जो कि डेफिनेटली मेरे भी जहन में नंबर वन यही गाना आया था, एंड दैट इज तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। तो जी आज के जो हमारे लकी विनर हैं, आप सबकी फोन कॉल से जो मैथ के फॉर्मूले से नंबर आता है जी, आज की हमारी लकी विनर हैं कॉलर नंबर वन प्रीति अग्रवाल। प्रीति कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये $10 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर। दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट यानी कि चंडीगढ़ बाइट्स एंड एलन पे पहुंचाने के लिए, देन यू विल हैव अबाउट 7 days टू गो एंड अवेल योर गिव अवे। और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज फॉर योर पार्टिसिपेशन। लेट्स मूव ऑन टू चीज बड़ी है मस्त मस्त।

This part of our show is brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax firms in the US. जी हाँ, आप इंडिविजुअल हो, आपका कोई अपना स्टार्टअप हो या फिर आप एस्टैब्लिश्ड बिजनेस रखते हो, AG Fintechs ऑफर करते हैं ट्रस्टेड टैक्स सर्विसेज, अकाउंटिंग, पेरोल, बुककीपिंग एज वेल एज बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज भी. तो जरूर आप AG Fintechs से कॉन्टैक्ट कीजिए इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न, एनी थिंग दैट यू नीड टू डिस्कस एंड सी वट सोल्यूशन दे आर गोइंग टू गिव यू. 469-942-9888 is that number, 469-942-9888. Ya phir unki website is always available, that is agfintax.com, which is FINTAX, agfintax.com. Acha ji, mix pot mein mujhe lagta hai ki bas aakhri ek gaane ka, purane aur ek naye ka jagah hamare paas baki bachi hai. 3 baje ke baad se kids junction hamara shuru ho jayega. So is gaane ke sath mix pot ko, purane gaane ka ikhtitam karte hain. Amitabh Bachchan aur Zeenat Aman ki ye film Lavaris, jo ki ek bahut hi shandar film thi. Agar aapne Lavaris nahi dekhi to zarur check out kijiye, you are going to love that movie. Kuch behtareen gaane, ek se badhkar ek khoobsurat gaana is film ka. Lekin aaj jo maine aapke ये गाना निकाला है लवारिस फिल्म का, वो एक ऐसा गाना है जो कि आइकॉनिक बन गया. हर बंदे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा शख्स है जिसने ये गाना कभी गुनगुनाया नहीं होगा, किसी शादी ब्याह की ढोलकी वोलकी में कभी गाया नहीं होगा. दिस इज मेरे अंगने में, खास तौर पे अमिताभ जी की आवाज में. मेरे ख्याल अमिताभ जी तो नहीं, गालिबन सुदेश भोसले साहब की आवाज थी ये, लेकिन चलिए शायद मेरे ख्याल अमिताभ जी की हो. लेट्स लिसन टू दिस.

0: पर जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है मेरे यंगने में, हाँ मेरे यंगने।
1: जी हाँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोगों ने इस मिक्स पॉट का जिस्ट हम सबको समझ आ गया है। आप सब ब्यूटीफुल रिकमेंडेशंस देते हैं, गाना पुराना जो मैं चलाती हूँ उससे नए गाना आपके जहन में कौन सा आया है, एंड आई एम सो ग्लैड। अब मुझे आने लगी है मजे मजे की रिकमेंडेशंस और मेरा बढ़ने लगा है म्यूजिक बैग। थैंक यू सो मच। अभी जो लेटेस्ट हमारी लास्ट कॉलर थी, उन्होंने इस गाने से निकाला कि ये गाना आपने सुनाया है तो अब इसका नया वाला वर्जन बीवी नंबर वन सुना दीजिए। तो जी, बीवियों की बात हो रही है तो हियर इट इज, बीवी नंबर वन। And with that, we are heading on to a short break. After the break, we will get ready for Kids Junction.

0: Hello.
1: Remember to please like the video.
2: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM.

और अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या फिर किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देयर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो दिस सिचुएशन कैन गेट एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. डीलिंग विद द इंश्योरेंस कंपनीज, पेपर वर्क, लीगैलिटीज, एंड देर आर सो मेनी निटिग्रिटीज विद दिस सिचुएशन कि कई बार हमें पता भी नहीं होता. वी नीड एन अटर्नी बाय आवर साइड एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी उमर ख्वाजा. नॉट ओनली अटर्नी उमर ख्वाजा और उनकी टीम आपके लिए हमारा केस फाइल करेंगी, बल्कि दे विल गेट अस द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट वी डिजर्व. और इसमें जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये कि कुछ पे नहीं करना जब तक कि आप अपना केस जीत नहीं जाते. सो दैट इज एन एब्सोल्यूट विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस. यू, समवन यू नो, समवन यू केयर फॉर इज गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस. Send them, give them attorney Umar Khwaja's number for a consultation. That number is 469-300-5046. 469-300-5046 is the number. Attorney Umar, OMAR.com is the website where you can log on. 972-235-5555 is the number to the studio. The phone lines are open for kids. You are an elementary student. You are a middle school student. You are a high school student. Of course, high school ki tabhi chutti nahi hui. No matter what grade you are in, you can give me a call, request a song, and I will play it for you. This next number is going out to Anisha. This is Coca-Cola.

0: Phanisha Radio, you are live on air. What is your name?
1: My name is Pia.
0: Say that again, please.
1: My name is Pia.
0: Okay, Pia, what grade are you in?
1: Fourth grade.
0: Fourth. And what is your song request?
1: Danger.
0: Danger. I love that song. How was your day at school today?
1: Good.
0: And anything interesting or fun?
1: Yes.
0: What was it?
1: We had a house meeting.
0: Mm-hmm.
1: It was our house won.
0: All right. So did you have fun?
1: Yes.
0: Okay, lovely. Thank you so much for your call. I will play your song in a bit, okay? Stay tuned. And
1: I have my siblings.
0: Okay. I'm going to head on to a break and then I'll take your call off air, okay? Wait for me.
2: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
3: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है.
4: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
5: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
6: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
7: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
8: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रियल्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
14: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
15: Beta, 95% aaye?
16: Haan, mummy.
15: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
17: Mera?
15: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
17: Whoa.
18: School ka report card saal mein ek baar aata hai. But business ka report card har mahine. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
19: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.

मर्जी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहाँ जाऊं, गोरे को मैं कहूं काला, जीजा को मैं बोलूं साला, नदी को मैं बोलूं नाला, चाबी बिना खोलूं ताला। मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो बोलना नहीं, मुझे समझाना मत झूठ सही, चाहे पी जाऊं मैं चाय कॉफी डाल के दही।

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, a division of Brazos National Bank.
6: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
7: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
8: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
9: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
10: RCR, straight from the heart. Kal Hindi, Hindi Bol.
11: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navnita Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
12: Call Navnita Khemka at 347-449-4242.
10: फोन उठाइए, नंबर दबाइए 347-449-4242।
13: होचो
14: होको
13: होचो
14: होको
13: होचो
14: इट्स होको।
15: अरे बस भी करो यार।
14: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
15: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है, एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
16: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको, अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड कैटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
17: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
15: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
16: डील कहाँ?
15: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड द डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
16: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स तो नहीं फास्ट है। Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
15: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath first famous astrologer ab Dallas mein.
16: That magic remove.
15: World famous astrologer ab Dallas mein.
16: That magic remove. ट्रबल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
12: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न। समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
16: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
13: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.
18: कितने आदमी थे?
19: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: ਤੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ।
1: Get ready।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: जिंदगी एक रंगमंच है
2: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं. और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया. कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts, Plano. Limited seats, free parking and meet and greet options available. Tickets at eventbrite.com. More info, 214-869-2668. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.

Hey, you.

आज का सीन सिंपल है, म्यूजिक मस्ती और मैं। नाम तो सुना होगा, नवनीता। गाने होंगे, गॉसिप होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़े गेम्स, थोड़ा नया स्वैग होगा, मतलब फुल ऑन।

0: I love the plan. Thank God it's Friday. With me, Navneeta. 5 se 8, straight from the heart.
1: Thank God it's Friday. Welcome, welcome. Swagat hai aap sabka 104.9 FM Fun Asia Radio par. Ji haan, dil se bolne ka man ho raha hai. Thank God it's Friday because हफ्ता निकल गया और वीकेंड आ चुका है. वैसे ये हफ्ता की तो कोई कंप्लेन नहीं है बिकॉज इट वॉज अ शॉर्ट वीक बिकॉज वी हैड अ लॉन्ग वीकेंड. मंडे तक हमारी छुट्टी थी सो दिस हैज़ फेल्ट लाइक अ शॉर्ट वीक. पर फिर से वीकेंड आना तो वाव हो जाता है, राइट. एंड अ बिग शाउट आउट टू किरण नारसनेरी. किरण जो बहुत ही खास आज तो विद द किड्स क्लब शी जस्ट रॉक्स इट एंड ऑल द किड ऑल्सो रॉक इट ऑन हर शो. सो दैट वॉज अ वेरी वेरी fun Friday ki shuruaat and the vibe is on, that weekend evening is on.

0: सुपर फ्राइडे नाइट है तो धमाल तो होना ही है. कमऑन कमऑन गेट योर रेडियो ऑन. अगर आपके पड़ोसी का रेडियो ऑन नहीं हो तो उसको भी ऑन किया जाए. जिसको भी आप फ्रेंड मानते हो उनका रेडियो ऑन नहीं है तो उनको भी ऑन करना होगा. एंड दैट इज व्हाट द आइडिया इज, टू हैव द रेडियो ऑन ऑन अ फ्राइडे नाइट. और वैसे आज तो सब मूव ऑन हो रहे हैं. दे आर गोइंग टू कुमार शानू. आप जा रहे हो, कुमार जी आ चुके हैं, शानू जी, एंड उनका शो आज है. एंड लॉट ऑफ यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड. तो कुछ लोगों की कॉल्स आ रही थी और वो पूछ रहे थे कि कितने बजे होने वाला है ये शो. सो इफ़ यू हैवन गॉट द टिकट्स तो आप ये क्वेश्चन पूछेंगे. अदरवाइज तो आपको पता ही है कुमार शानू का शो है. सो इट इज़ स्टार्टिंग टुडे इन दिस फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ. और ज़्यादा दूर है नहीं. 6:45 मेन शो शुरू है, 7:30 PM शार्प. प्री शो 6:45 से है बट 7:30 शार्प शुरू हो जाएगा कुमार शानू का शो. डोर्स आपके लिए खुल रहे हैं 6:30 PM पर. सो बी देयर बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस आउट ऑन कुमार शानू शो. और यहाँ पर मैं हूँ आपके लिए. और यार डिड यू गाइज गो ऑन अ वेरी वेरी अमेजिंग सा फन सा ट्रेंड? ओके, ये गाना सुन लीजिए फिर मैं बता दी कौन से ट्रेंड के बारे में बात मैं बता रही हूँ आपको.
1: तो हर जगह प्रकट हो रही है, श्राप है या मैनिफेस्टेशन चल रहा है अब.

0: सुपर 104.9 एफएम फन एजा रेडियो सुन रहे हैं और ये वाला जो गाना है दिस इज आल्सो ब्रांड न्यू सॉन्ग कुछ नया हो जाए मैं प्रेम की टाणु कहो तो एंड अरमान मलिक इसके म्यूजिक के ही करता धरता एंड यू आर लिसनिंग टू 104.9 एफएम फन एजा रेडियो मेरे साथ और जो गाना आवाज सुन रहे थे आप दैट वाज अरमान मलिक एंड कवाली वाज संग बाय अल्तामा फरीदी म्यूजिक प्रोड्यूसर द म्यूजिक कंपोजर इज अंकुर पाठक नॉट द म्यूजिक प्रोड्यूसर बट दिस वाज अ ब्रांड न्यू सॉन्ग वैसे आप ये ब्रांड न्यू ट्रेंड में घुसे हैं क्या नहीं 1980s एवरीबॉडी इज पोस्टिंग अ फोटो ऑफ देयर चैट जीपीटी में जाके अपना कोई पिक्चर को आप बोल रहे हो कि लेट अस मेक इट 1980s में कैसा सो बिग बोल्ड हेयर यू नो एवरीबॉडी इज गेटिंग ऑन टू दैट 80s का ज़माना विथ बिग बोल्ड हेयर जो कैसेट के ज़माना था मैंने भी किया है Everybody is doing so, but एक बार बतानी थी आपको अभी भी वो ना हाईवे के पास वाली जो ज़मीन है ना वो खरीद लीजिएगा अगर मिल रही हो तो क्योंकि जब आप ना 26 में आ जाएंगे ना ऑलरेडी बहुत महंगी हो चुकी होगी एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव 1980 में पहुँच रहे हैं सोचिए ऐसा भी कुछ किया जा सकता था तो कितना ही अच्छा होता बट नहीं हम बस 1980s को छू के वापस 26 में ऐसे याद आ रहे कुछ डिफरेंस नहीं है हमारे और पिक्चर्स सारे आज के ही है बट यस सुपर फन टू गेट ऑन द ट्रेंड एंड ये जो वाइबिंग ट्रेंड है ना एवरीबॉडी इज वाइबिंग ऑन इट एंजॉय इट इफ यू हैवन्ट डन इट डू इट
1: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: अरे यार घर मिल गया
4: घर तो देख रहा हूँ लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग
5: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर वो सिर्फ घर नहीं दिखाते हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी
4: सीरियसली अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी
5: बिल्कुल विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम
6: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
7: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
6: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
7: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
6: सच में सब संभालेंगे
7: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770 Vanessa Events, your celebration partner.
4: Dad, property papers कहाँ हैं?
8: Laptop में.
4: Investment?
8: Google Drive.
4: Insurance? Passwords?
8: बेटा, don't worry, मुझे सब पता है.
4: Dad, वही तो problem है, सिर्फ आपको पता है.
5: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
9: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
5: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
12: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
14: इस साल तो कमाल हो गया हमारा रेवेन्यू डबल हो गया
15: सर अच्छा है लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया
14: नहीं
15: बुक कीपिंग अपडेटेड है
14: नहीं
15: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया
14: वो भी नहीं
15: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
5: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
2: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
16: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hain. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer zarur dekhiye HEB ke naye DFW stores. Mid-Cities, Irving aur Murphy mein khul rahe hain. To aaj hi apne nazdeeki HEB भी पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better.
17: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
18: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
19: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
20: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Funasia.

0: totally मन यही तो हो रहा है ना कि आप चीखे ये thank god it's friday absolutely और भी चीख सकते हैं जाके कुमार शानू के शो पर which is happening tonight and I know a lot of you are headed for that. किसी ने कहा है रिश्तों में समझदारी जरूरी है, बुरा दोनों को लगता है, ये दोनों को समझना जरूरी है. वाह ना, क्या बात है. वैसे रिश्तों में समझदारी की बात यही है कि खुद को हम यही लगता है कि मैं ही सही हूँ, सामने वाला गलत. बट अगर ये सिर्फ समझदारी हो कि यार गलती जिसकी भी है बुरा दोनों को लग रहा है, वो समझदारी होना ना बहुत कम लोगों के पास होती है. वेरी नाइस, मेरे को ये दिल से दिल की बात दिल पर ठाए लगी, सोचा आपको भी लगेगी, होप लगी हो. बट दिस वन फॉर यू, दिस ब्रांड न्यू सॉन्ग फ्रॉम कुणाल खेमूज मूवीज में प्रीति जिंटा भी, और लास्ट हफ्ते मैंने बताया था शर्मिला टैगोर सासू माँ ने भी एक छोटा सा रोल किया है इस मूवी में. ऐसी मेरी वाइब.
1: अलग है लाइफ, अलग है स्टाइल, अलग है हाइप, मेरी अलग है वाइब, अलग है लाइफ, अलग

ये कुणाल खेमू की वाइब है, टोटल एनर्जेटिक बट इस वाइब फिल्म में प्रीति जिंटा भी इनके साथ है और शर्मिला टैगोर इनकी सासू माँ इज डूइंग अ स्मॉल कैमियो रोल, नॉट बिकॉज इट इज दामाद का फिल्म बट बिकॉज शी रेड द स्क्रिप्ट एंड थॉट दैट इट विल वर्क फॉर हर. सुपर कूल. वैसे जब इस फैमिली की बात आ गई तो एक और खबर देती हूँ. सैफ अली खान शर्मिला टैगोर के साहबजादे एंड अक्षय कुमार आर बैक टुगेदर. उनकी फिल्म आ चुकी है आज दोनों की हवाएं हैवान सॉरी जो रिलीज हुई है टुडे, डायरेक्टेड बाय प्रिया दर्शन. और सबसे नोस्टैल्जिक ये बात है कि अक्षय और सैफ गेव अस वेरी वेरी कूल फिल्म्स लाइक मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, ये दिल लगी. नाउ दे आर बैक टुगेदर आफ्टर ईयर्स. और ये जो फिल्म है हिंदी रीमेक ऑफ मोहन लाल ओपम और अर्ली बॉक्स ऑफिस इंडिकेट तो ठीक ठाक है, बट अक्षय और सैफ का ईरा था मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी ये दिल लगी में बॉयज आर बैक. दैट इज़ द फन पार्ट. हैवान कैसी होगी वी डोंट नो, बस नोस्टैल्जिया है इन दोनों का कि दे आर बैक टुगेदर. बट अब देखना है ऑडियंस इनकी रीयूनियन को कितना मार्क्स देती है. आप कितना देंगे आउट ऑफ 10 आई डोंट नो, बट वेन एवर वी वॉच देम टुगेदर मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी ये दिल लगी इट वॉज रियल सुपर कूल. सो देयर यू गो अबाउट द फिल्म दैट हैज रिलीज टुडे. वैसे दोस्तों ये जो मैंने ब्रेक से आने के बाद मैंने कहा था ना कि हमें समझदारी यही होती है कि एक दूसरे को ये समझ लेना चाहिए कि मुझे दिल में कुछ लग रहा है तो दूसरे को भी लग रहा है. सो वन ऑफ माई लिसनर्स सेड कि उसके साथ ना इम्पॉर्टेंट ये है कि स्पेस दे दे हम एक दूसरे को. वेन एवर टू पीपल आर टुगेदर सोशल एनिमल वी आर, बट वी बिकम एनिमल नॉट जस्ट सोशल.

Nice na, very beautiful song. Actually, Imtiaz Ali ki film hai, where main wapas aaunga. Bahut intense and a very interesting movie. Ab to ye bhi news de deti hu ki OTT pe aa gayi hai. It was once upon a time on big theaters, par ab ye OTT pe aa gayi hai. It's a very intense and good acting by all who have been part of this film. Isme Vedang Raina, he's there, Sharvari is there. So ye dono ke beech mein ye gaana chal raha tha. और पास्ट लास्ट हफ्ते मैंने आपको ये भी बताया था, ये जो OTT पे फिल्में आती हैं बड़े थिएटर्स पे, उनको नहीं मिलता अपॉर्चुनिटी, या फिर बहुत सारी फिल्मों को अपॉर्चुनिटी मिल जाता है बड़े थिएटर्स में, बट दे डू नॉट परफॉर्म सो वेल. आफ्टर कमिंग ऑन टू OTT, पीपल रियलाइज, ओ माय गॉड, इतनी अच्छी फिल्म लगी थी थिएटर्स में, हमने जाके वो फिल्म नहीं देखी है. एंड नाउ वंस वी गेट अ चांस टू वॉच ऑन OTT, वी फील सैड कि इसका हशर अच्छा नहीं हुआ, बिकॉज इट शुड हैव अर्न्ड. वैसी वो एक फिल्म है मिर्ज़ापुर, वैसे इट वॉज फर्स्ट ओनली वॉन्टिंग टू रिलीज ऑन OTT, एंड देन द मेकर्स डिसाइडेड बिकॉज दे गॉट स्क्रीन्स एंड दे रिलीज्ड इट इन द थिएटर्स. एंड दिस इज द न्यूज़ आई गेव यू लास्ट वीक. एंड आज एक हफ्ते बाद, 7 days बाद, वी कम टू सी दैट मिर्ज़ापुर हैज़ डन ग्रेट. इट हैज़ क्रॉस 200 crore वर्ल्ड वाइड. और ये रिपोर्ट आई है कि टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इज़ लाइक ऑलमोस्ट 1.2 crores. पिछले फ्राइडे मैंने बोला था देखते हैं क्या होता है. वेल, जवाब मिल गया, मिर्ज़ापुर द मूवी हैज़ क्रॉस्ड सो मच एंड इन जस्ट 1 week. सो समटाइम्स किसी मूवी का लक हो जाता है, और समटाइम्स जिसके लिए जो बना हो, कहते हैं दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, प्रॉब्ली वो होता है. या फिर जो मेकर्स होते हैं ना, कितना वो रिस्क ले सकते हैं, और हम होते हैं ना, कितना हम देखने जा सकते हैं फिल्म बड़ी पर्दों पर. आई ऑलवेज फील ईच मूवी शुड बी गिवन द चांस टू बी वॉच वंस. आप एक इंसान हो, एक बार तो जरूर देखना बड़े पर्दे पर, क्योंकि उस फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत लगी है.

0: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
2: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
3: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम और कॉल 4697343338, 4697343338। माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
4: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
8: इतना सब और प्राइस?
7: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं हीरो।
10: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
11: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
10: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
11: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
10: ये क्या होता?
11: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
12: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ इज स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
13: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
14: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
15: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
16: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
17: तुमसे मिलके दिल का है।
15: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
16: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क, इश्क है, इश्क, इश्क ये, इश्क, इश्क है।

सुपर, पैसा पैसा पैसा एक्चुअली. वैसे ये जो दिल की बात है ना, दिल तक नहीं रहती है, कभी कभी बीमारी में तब्दील कर लेती है, तब्दील कर लेती है, मतलब चेंज हो जाती है जस्ट बिकॉज यू आर सो मच इन लव. वैसे बीमारी की बात तो नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, नॉट सो गुड, डाउन विद वेदर, चेंजेस हो रहे हैं, एलर्जी से बहुत फील होने लगता है आपको कि आप की नाजुक है आपकी तबीयत. सो फॉर दैट आई वॉज ट्राइंग टू से, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो भी पैशन हेल्थ केयर जो नेटवर्क है, दे आर ग्रेट अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विथ पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ. दे इंक्लूड प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ एंड मोर. और इतना घुमा फिरा के मैं इसलिए कह रही थी कि कभी कभी ना समझ में नहीं आता कि डॉक्टर के जाए या ना जाए, बट आपको $85 में दे विल टेक केयर ऑफ यू एंड योर हेल्थ नीड्स राइट नाउ इफ़ यू आर गोइंग थ्रू. आप फ़ोन करके देखिए उन्हें. विदाउट इंश्योरेंस ऑल्सो दिस वर्क्स आउट वेरी वेरी गुड. फोन उठाए, नंबर दबाइए 214-666-6259, या फिर विजिट कीजिए पैशन हेल्थ फिजिशंस डॉट कॉम. और दिस इज़ नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, बट दिस इज़ ओनली दैट वन टाइम पे दैट यू डू एंड यू कैन गेट द ट्रीटमेंट दैट यू आर लुकिंग फॉर आउट देयर. 104.9 FM फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं, और मैं हूँ आपकी होस्ट नवनीता पानसेहाट, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट. सुनते रहिए मुझे. शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद.

0: I guess. We killed it.
1: Pagle kya? Troll ho jayenge.
2: Yeah.
1: Not at all.
0: Dino, dal de. Troll hue to ho jayegi.
3: ट्रोल तो हो ही गए तुम ही हो बंधु. दिस अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग जो हमेशा से बना है कॉकटेल का गाना. पता है वैसे अभी हाल ही में सैफ अली खान बोलते हुए पाए गए दैट कॉकटेल जो उन्होंने की थी वो शायद इट वॉज नॉट समथिंग विच ही वॉन्टेड टू डू. इट वॉज अ मिस्टेक. कैन यू बिलीव इट? He looks back at his 2012 cocktail and called doing it a mistake, saying he felt the script was somewhat regressive. Regressive? Really? Imagine doing a successful movie and years later saying, actually, I shouldn't have done it. Saif Ali Khan says cocktail was a mistake and he found the script slightly regressive. Interesting, hai na? Can we judge an old Bollywood movie entirely through today's lenses? सिनेमा बदला है, ऑडियंस बदली है और perhaps एक्टर्स भी. बट आज डिफरेंट है, उस समय डिफरेंट था, हर कुछ बदल जाता है. डूइंग अ सक्सेसफुल मूवी एंड देन फीलिंग आफ्टर सो मेनी ईयर्स बिकॉज एक कॉकटेल 2 भी आ गई है. सोच रही हूँ मैं, आप भी सोच लीजिए. बट एनीवे, लोगों की अपनी अपनी पर्सपेक्टिव होती है.
0: सर, हर गाने का रीमिक्स कर देते हैं सर. सर, हमारी जनरेशन को ये सब समझ नहीं आता. नहीं
3: हाँ, रीमिक्स
0: छोड़ो यार सर, मेरे को
3: कितने सारे गानों के रीमिक्स हो रहे हैं
0: भैया. गाना
4: तू समझ नहीं
3: रहा, अब ये भी परेशान है.
4: नहीं करना तू, मत कर, मैं जा रहा हूँ.

Lovely. This was also a remix by Tera Star Hai, Raghav S. film mein. And cool song though. वैसे बताएं दोस्तों, आपको पता होगा, एड सुन रहे होंगे, आई एम अ रियल्टर नाउ, वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, लेकिन अब रियल्टर भी मेरी पहचान है. एंड आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट अ वेरी अमेजिंग प्रॉपर्टी दैट आई हैव लिस्टेड इन सलाइना, 2722 बर्नेली कोर्ट में. ब्रैंड न्यू प्रॉपर्टी है. जनवरी में द सेलर हैड मूव्ड इन एंड ही इज़ लेटिंग इट गो फॉर सम रीज़न. ही इज़ मूविंग आउट ऑफ द कंट्री. सो इट इज़ सुपर डुपर, इतना कुछ है. और इस संडे को आप ओपन हाउस में आते हैं 2 to 4 में, तो उसमें है ना बहुत ब्रांड न्यू फर्नीचर एंड अप्लायंसेज है. जब सब कुछ फ्री में जा रहा है, इफ़ यू कम ओपन हाउस में, अगर इफ़ यू लाइक इट, जस्ट टेक इट विथ एवरीथिंग इंक्लूडेड इन द लिस्टिंग प्राइस. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. इफ़ यू नीड टू नो मोर अबाउट इट, माई नंबर इज 347-449-4242. And this is, trust me, ekdam steel hai. If you get this house, it's gorgeous. It's beautiful.

0: सेलिब्रेटिंग अक्षय कुमार टुडे, लेकिन अभी हमारे साथ मेरे इस स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ रही हैं मिस हुमैरा जमानी. हुमैरा जमानी आपके लिए बहुत खास इंश्योरेंस लेके आती हैं, चलिए उन्हीं से बात करते हैं. वेलकम मिस हुमैरा जमानी, हाउ आर यू डूइंग टुडे?
1: I'm doing good. How about you?

बिचते हैं उनके लिए। एक वक्त वो रेस्टोरेंट में लोगों को खाना सर्व किया करते थे। यस एंड दैट्स अ बिग न्यूज़ एंड एवरीबडी नो अबाउट हिम। और ये मार्शल आर्ट सीखने के बाद वो इंडिया लौट के आए और फिर मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया। और एक्चुअली दिस ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ हिज बॉलीवुड आइडेंटिटी, क्योंकि अब जब वो एक्शन सीन्स करते हैं सो ऑथेंटिसिटी दिखती है, बिकॉज ही हिज बॉडी हैज वर्कड ऑन इट एंड इट शोज ऑल द यू नो ही डजंट नीड अ डबल, ही कैन डू इट ऑल बाय हिमसेल्फ एंड द ऑथेंटिसिटी शोज। सो या द स्टोरी ऐसा है कि वो बॉलीवुड नहीं ज्वाइन कर रहे थे, ही वॉज जस्ट टीचिंग मार्शल आर्ट्स। और एक स्टूडेंट के फादर ने उन्हें सजेस्ट किया तुम मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करते। मॉडलिंग असाइनमेंट्स आए, पोर्टफोलियो बना और धीरे धीरे कैमरे के पीछे खड़ा लड़का कैमरे के सामने आ गया। इनफैक्ट एट वन टाइम अक्षय फोटोग्राफर्स के साथ लाइट बॉय का भी काम किया करते थे। और एक फोटोशूट के दौरान गोविंदा ने उन्हें देखा और मजाक मजाक ने कहा उनसे तू हीरो क्यों नहीं बन जाता, हीरो लगता है। इमेजिन दैट, गोविंदा के मुंह से दिस इज व्हाट केम अप। एंड इयर्स लेटर अक्षय कुमार और गोविंदा भागम भाग में एक साथ हमें नजर आए। एंड दिस इज द स्टोरी फ्रॉम बीइंग अ मॉडल टू हाउ बीइंग अ मूवी स्टार। कीप लिसनिंग टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो एंड दिस सॉन्ग आई जस्ट लव इट।

Hi, Shajulka and Akshay Kumar. Celebrating Akshay Kumar today on Star Kalakar ko Mubarakbad. With your host Navneeta here. वैसे बहुत लोग आप जानते हैं कि अक्षय कुमार actually martial arts सिखाने के लिए बैंकॉक गए थे और वहाँ अपना खर्चा निकालने के लिए he was a chef or waiter का काम उन्होंने किया था. So yeah, ये जो अभी superstar है red carpet

0: एक और लड्डू ले लो।
1: थोड़ी और बिरयानी।
0: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
2: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
3: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, वी आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रोस्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
5: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
6: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
7: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
6: कैसे?
7: पेज 3 ईटरी?
6: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
7: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोल्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
6: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
8: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
9: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Beta, 95% aaye?
2: Haan, mummy.
1: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
3: Mera?
1: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintechs.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
5: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration. From top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.
6: Welcome back, दोस्तों. स्वागत है आप सबका 104.9 FM Fun Asia Radio पर. राजीव भाटिया की बात कर रहे थे. राजीव भाटिया उर्फ हमारे अक्षय कुमार, जिन्होंने जन्मदिन मनाया सितंबर 9th को. यू नो, वैसे मायर मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर बने, मॉडल बने, बट कौन दिया उन्हें फर्स्ट लीड रोल ब्रेक? इट इज़ क्रेडिटेड टू डायरेक्टर राज सिप्पी, हु कास्टेड हिम इन सौगंध 1991 में ऑपोजिट शांति प्रिया. लेकिन ये उनका बेसिक डेब्यू रोल बना, बट उनको एक छोटा सा अपियरेंस मिला था महेश भट्ट की फिल्म आज में 1987 में एज अ मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर, वही जो मॉडलिंग करते हुए मार्शल आर्ट सिखाते हुए एक छोटा सा नन्हा सा रोल मिल जाता है. दैट वाज द वन ही गॉट, बट हीरो बनाया सौगंध ने. फिल्म बहुत बड़ी नहीं थी, ठीक ठाक करी, लेकिन एक नया हीरो का सफ़र शुरू हो चुका था. और एक साल बाद इनका सबसे बड़ा ब्रेक, विच कम्प्लीटली चेंज्ड His Life, 1992 में आई एक फिल्म जिसने सब कुछ बदल दिया. दैट वॉज खिलाड़ी. और उसके बाद तो क्या था, खिलाड़ी सिर्फ फिल्म का नाम नहीं था, अक्षय की आइडेंटिटी ही बन गई खिलाड़ी. एंड देर वॉज एक के बाद एक खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, खिलाड़ी 420, खिलाड़ी 786. ओ माय गॉड, अ टोटल खिलाड़ी ही बिकेम.

This is the chemistry I was talking about. Akshay Kumar and Saif Ali Khan in Main Anadi Tu Khiladi, Main Khiladi Tu Anadi. Right, that's the one. So 104.9 FM Funija Radio sun rahe hain aur hamare Dallas mein ek khiladi hain. Looking for a great food in Plano, it is signature cuisine, has all the right flavors. Enjoy their famous Nihari sizzling grills, crispy fried chicken and mouth-watering paratha rolls. Planning a birthday, anniversary or special celebration, they also offer banquet services. Aap visit kar sakte hain Signature Cuisine at Spring Creek and Ama in East Plano. Ya phir chale jaiye signaturecuisine.net. Signature Cuisine, leaving its signature on every taste. And today celebrating the Khiladi number one. वैसे अक्षय को हम action hero कहते हैं, right? फिर एक दिन वो comedy करने लगे और comedy भी ऐसी कि comedy hero ही बन गए. हेरा फेरी, गरम मसाला, welcome, भूल भुलैया. And you know, ये जो welcome है किश्त पे किश्त बने जा रहे हैं. और suddenly पता चला खिलाड़ी सिर्फ मारधार नहीं कर सकता, बंदा हंसा भी कमाल कर सकता है. और फिर आई एक टोटल चेंज आइडेंटिटी विद फिल्म्स लाइक एयरलिफ्ट, बेबी, स्पेशल 26, रुस्तम, जैसे कंप्लीटली डिफरेंट रोल्स, कंप्लीटली डिफरेंट जॉनर. रुस्तम के लिए तो उन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी जीता. सो परहैप्स Akshay Kumar's biggest strength isn't action. It is reinvention, maybe. वही martial arts जो हर समय आपको सतर्क, हर समय बदलाव, हर समय bring it on कहता है. And that's what Akshay did always.

ब्यूटिफुल, दिस वॉज तेरे संग यारा, अक्षय कुमार को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज हम. एंड रुस्तम फिल्म बहुत ही अमेजिंग रुस्तम बनी थी. एंड इनका जो एक्टिंग वॉज सुपर डुपर. रुस्तम के लिए इन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड जीता फॉर बेस्ट एक्टर. सो यू नो इतनी सारी फिल्में हम सब अक्षय की डिसिप्लिन की स्टोरी सुनते हैं. अर्ली मॉर्निंग फिटनेस, मार्शल आर्ट, रात को जल्दी सो जाते हैं. एंड ही नेवर इज़ इन पार्टीज एंड इट इज़ सेट्स पे भी कॉल ऑफ कर देते हैं. इट्स पैक हो जाना होता है बिकॉज ही सो स्ट्रिक्ट अबाउट हिज टाइमिंग्स. बट एक बहुत स्वीट सीन की बात है. ही सेड दैट ही इज़ वेरी सेंटिमेंटल अबाउट द फर्स्ट ऑफ हिज लाइफ. मतलब पहला प्यार जैसे कहते हैं ना, हमेशा कहते हैं जो भी उनकी पहली चीज़ें हैं ना, ही इज़ हेल्ड ऑन टू देम लाइक हिज फर्स्ट होम, हिज फर्स्ट कार, फर्स्ट मोटरसाइकिल. इतनी स्वीट ये बात है. आई लव दिस अबाउट हिम बिकॉज सक्सेस का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप भूल जाएं कि आप आए कहाँ से हैं. समटाइम्स द थिंग्स यू कीप रिमाइंड यू ऑफ द पर्सन यू वर एट वन टाइम. क्योंकि जो फर्स्ट थे वो मार्शल आर्ट टीचर थे और ऑफकोर्स उस समय उतनी ही आमदनी थी. तो फर्स्ट आर नॉट वॉट यू कैन डू टूडे बट दैट कीप्स यू ग्राउंडेड, राइट. एंड जब उनका नाम हुआ, उसके पहले वो क्या थे, उसको वो नहीं भूलते. दैट टॉक्स अ लॉट अबाउट अ पर्सन. शेफ, वेटर, मार्शल आर्ट्स टीचर, मॉडल, एक्शन हीरो, कॉमेडी स्टार, नेशनल अवार्ड विनर. And right now, I would say he is the most recognizable stars. Maybe Akshay Kumar ki journey ka sabse interesting part yahi hai. Success ka ek straight road nahi hota. Kabhi Bangkok ki kitchen se guzarta hai, kabhi martial arts class se, kabhi modeling assignment se, aur kabhi wahi raaste aapko Bollywood ke set tak le jaate hain. Wishing this khiladi a very, very happy birthday.

0: ले जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़ावे, सुइट 205, फ्रिस्को।
2: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
3: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
2: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
3: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
4: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
5: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed? And are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
6: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
7: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
8: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
7: Fikar not. We have the perfect solution.
1: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
9: Aaj se aaj, straight from the heart. Kal Hindi Hindi Bol.
10: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navnita Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
11: Call Navnita Khemka at 347-449-4242.
12: फोन उठाइए, नंबर दबाइए 347-449-4242.
13: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चोकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चोकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और excitement sub ek hi destination mein. Please play responsibly, must be 21 years or older to game.
14: Welcome back, 104.9 FM, Fun Nature Radio sun rahe ho, aur yeah, khiladi ka janmdin mana rahe hain, 9th of September ko Akshay Kumar ka janmdin, and he has really come a long way. Kitna kuch entertainment diya hai Akshay Kumar ne hame, and खिलाड़ी सबसे बड़े खिलाड़ी, और खिलाड़ी को जाते जाते आई वुड गिव दिस गाने का लास्ट यू नो डेडिकेशन, बिकॉज इसके बगैर अक्षय कुमार इज़ नॉट अक्षय कुमार।